अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। आपने सुना गायन, कलाकार नदीम अहमद खान, राग अल हैया, बिलावल आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 6:10 और 13 सेकंड। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप भक्ति संगीत पर कार्यक्रम आधारित कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक चिंतन। हिंदी भाषा पर महान साहित्यकारों के विचार। वार्ताकार हैं अनीता दुबे।
1: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी भाषा पर महान साहित्यकारों के विचार। इस विषय पर लघु वार्ता, आलेख और वाचन स्वर अनीता दुबे का।
0: हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। ये भारत की केंद्र सरकार की आधिकारिक राजकीय भाषा है। हिंदी भाषा के इतिहास पर अगर दृष्टि डालें तो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। आज के समय में जो हिंदी प्रचलित है वो आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आधुनिक आर्य भाषाएं प्राचीनतम संस्कृत भाषा से निकली हैं। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा की विकास यात्रा आधुनिक काल से अब तक चल रही है। हिंदी भाषा के विकास की जब भी बात आती है तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दो पंक्तियां याद आती हैं। निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहत मूड के मूल। इस दोहे से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपनी भाषा हिंदी से कितना लगाव था। महादेवी वर्मा जी का मत था कि हिंदी भाषा सरल और मीठी है, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा को प्रेम की भाषा कहा है। महात्मा गांधी जी का विचार था राष्ट्रीय भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। हिंदुस्तान में सिर्फ देवनागरी लिपि का ही व्यवहार होना चाहिए। हिंदी भाषा के महान साहित्यकार गोविंद दास जी ने अपने शब्दों में लिखा है, जब हम अपना जीवन जननी हिंदी मातृभाषा हिंदी के लिए समर्पण कर दें, तब हमें हिंदी प्रेमी कहा जा सकता है तथा हिंदी से सर्वश्रेष्ठ भाषा हो ही नहीं सकती। राहुल सांकृत्यायन, जिनको हिंदी साहित्य का महापुरुष कहा गया, उन्हें महापंडित की उपाधि भी दी गई। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार होने के नाते उनका मत था, हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। यदि हिंदी का आगे विकास बढ़ाना है तो हिंदी की प्रमुख बोली कौरवी को समझना होगा। हिंदी साहित्यकारों में जाने माने साहित्यकार पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने हिंदी भाषा में अनेकों साहित्य लिखे और उनका मानना था कि हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी भाषा के महान काव्यांदोलन और छायावादी कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत का मत था, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरल स्रोत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का विचार था, कवि को अपने भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने संबंध में हिंदी खड़ी बोली में स्पष्ट लिखा, हम किसी भाव को जल्दी और आसानी से तभी व्यक्त कर सकेंगे जब भाषा पूर्ण स्वतंत्र और भावों की सच्ची अनुगामी होगी, जो कि हिंदी भाषा पूर्ण रूप से उत्तम है। हिंदी साहित्य की नकल पर कोई साहित्य तैयार नहीं होता। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। ये सत्य है विश्व पटल पर भारत की विविधता पूर्ण संस्कृति को एक सूत्र में परोते हुए दिव्य स्वरूप प्रदान करने वाली भाषा हिंदी है। ये भारतीयता का प्रतीक है, हमारी संस्कृति की संवाहक है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। सुनते हैं अयोध्या कांड भाग 70।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी, हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अयोध्या कांड भाग 70। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्विस राष्ट्रपतिना गाय पार्मिलेन इत्यमुना सह मन्त्रणानन्तरं पञ्चसहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अत्रावधेयं यत् सन्धयः तावत् जनप्रवासाय, युवव्यावसायिकविनिमयाय, परिवहनप्रौद्योगिकीविकासाय च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षासहयोगे नूतनक्षेत्राणाम् अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे च परस्पर सम्बन्धम् अत्यन्तं सुदृढं करिष्यतः।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: नवदेहल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे 13,500+ छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकं अर्पयिष्यते। अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे 44,200 छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
1: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु पञ्च विधानसभासनेषु तथा असमस्य नागाउं लोकसभासने च अद्य शान्तिपूर्णं मतदानं प्रचलति। निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामी शुक्रवासरे सम्पादयिष्यते, यस्य फलं तावत् तस्मिन्नेव दिने उद्घोषितं भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति हिमाचलप्रदेशस्य त्रिदिवसीय प्रवासे भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षित चिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य केरलमाहे दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल क्षेत्रेषु अतिवृष्टि परा संजेतना प्रकटिता। विभागेनानेन संसूचितं यत् आगामी दिनद्वये त्रये वा जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड लक्षद्वीप प्रांतेषु विद्युत्पात पुरस्सरं मेघगर्जनं च संभाव्यते। यमन देशस्य मान्यता प्राप्तेन शासनेन हूती विद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्य अभियानं प्रारब्धम्। शासकीय बलैः रक्ताब्धि तटस्य मुख्य स्थानेषु अग्रगतिः प्राप्ता। अभियानस्यास्य मुख्यम् उद्देश्यं हूती नियंत्रितानां भूभागानां पुनरधिग्रहणम् अस्ति। पञ्च स्पर्धानां

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान जारी है। मतगणना 9 अक्टूबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000 एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 7:10। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे आस्था गोस्वामी के गाए भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना आस्था गोस्वामी से भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 7:33 और ये वक्त होता है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम पवार, लेकर आई हूं बहुत सारे सुरीले गीत। लीजिए, एंजॉय कीजिए इस गीत को जो भी आप सुन रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और कहते हैं ना दोस्तों कि हर सुबह जिंदगी हमें एक नया मौका देती है, कल जो नहीं कर पाए उसे आज करने का, और जो अच्छा है उसे और बेहतर बनाने का। जी हाँ, और इसीलिए हम सुनते हैं संगीत। संगीत जो होता है ना, हमारे मूड को और बढ़िया कर देता है, हमारा पूरा दिन सुहाना हो जाता है। संगीत में वो जादू होता है जो पल भर में हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आता है, और कुछ पसंदीदा गीत सुनकर हम खुश भी हो जाते हैं, मन तरोताज़ा हो जाता है। और कभी-कभी एक खूबसूरत गीत हमारी पूरी सुबह का मूड ही बदल देता है।

दोस्तों, यदि आप घर पे हैं तो चाय पीते हुए सफर की शुरुआत कीजिए। घर के काम कर रहे हो या ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो, जहां भी हो आप, बस जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गीतों भरी।

जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से श्रृंगार हमारे व्यक्तित्व में खूबसूरती और निखार भर देता है, उसी तरह संगीत भी हमारी भावनाओं का श्रृंगार करता है। एक अच्छा धुन हमारे मन को सजा देता है, हमारी थकान दूर कर देता है और हमें उन खूबसूरत एहसासों तक ले जाता है जहाँ हम शायद हकीकत में कभी पहुँच भी ना पाए। वाकई संगीत की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है दोस्तों कि हम बैठे बैठे उन जगहों तक पहुँच जाते हैं जहाँ शायद हकीकत में कभी ना जा पाए। कभी कोई गीत हमें बीते हुए समय में ले जाता है, कभी अपने ही खूबसूरत एहसासों से मिला देता है और कभी ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच उन हसीन वादियों में घूम रहे हों।

जी हाँ दोस्तों, हंसी वादियों में घूमते घूमते अब जरा लौटते हैं उस खूबसूरत एहसास की ओर जहाँ कदम कदम पर संगीत सुनाई देता है। दोस्तों, कभी हवा की सर

हट में कोई गीत हमारे कानों में मधुर आवाज छोड़ जाता है तो कभी पायल की छन छन में संगीत का एहसास होता है। दोस्तों, संगीत भी ऐसा ही होता है, कभी हमें दूर हसीन वादियों में ले जाता है तो कभी हमारे कदमों की आहट को भी एक सुरीला धुन बना देता है।

दोस्तों, इस सुरीली मुलाकात के साथ अब वक्त आपसे विदा लेने का है। सुबह की खूबसूरत महफिल यहीं विराम देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन गीतों की मिठास आपके दिन भर साथ रहेगी। दोस्तों, आपसे मुलाकात फिर होगी इसी तरह किसी और दिन, नए गीतों और नई बात और नई सुबह और नई मुलाकातों के साथ। और हमारी मुलाकात तो आपसे होती ही रहती है, फिर कभी हम मिलेंगे आपके साथ, लेकिन आप तो रोज़ मिलते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग में किसी ना किसी से, और अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार,

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव

0: की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉट

0: लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर मुख्य अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माई ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam. I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
2: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने यह बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध। अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है। 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। पोलिंग बिगिन्स फॉर बाई इलेक्शंस टू 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन तमिलनाडु, पुदुचेरी इन वेस्ट बंगाल एंड लोन लोकसभा सीट इन असम। बीजेपी अनाउंसेस नेम्स ऑफ 8 कैंडिडेट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉर राज्यसभा इलेक्शंस। President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive.

0: कोरापुट एचएएल कोरापुट की तकरीबन 6 दहाइयों पर मोहित खिदमात और भारत की फिजाई व दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियतों और मुसल्ला अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी में उसके रोल को उजागर करेगी। तकरीब में शक्ति इंजनों की तैयारी के लिए दूसरी प्रोडक्शन लाइन के कयाम को भी नुमाया किया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमाएकारी की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम में वाके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बहरी बेड़े के मुआवनत करने वाले जहाज FSS-1 को पानी में उतारेंगे और बहरी बेड़े के मुआवनत करने वाले जहाज FSS-5 की तैयारी के 5 बाजाबता आगाज की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो जदीद तर बनाए गए सिल्पवे 4 और 300 टन वजनी गोलियात क्रेन का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गाई पारमेलिन ने कल नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की, जिसके बाद दोनों के दरमियान 5 समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक साझेदारी, निशान जद किए गए इलाकों में मोबिलिटी सिस्टम और बुनियादी ढांचे और इख्तरा, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सनअतकारी के सिलसिले में ताउन के लिए अमल दरामद के इंतजाम व दीगर माहदे शामिल हैं। एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन और न्यूक्लियाई तवानाई से मुतालिक इश्तराक को मजीद गहरा करने के इम्कानात की निशानदेही की है।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्विट्जरलैंड के सदर के एजाज में ईशाइये का एहतमाम किया। सदर पारमेलिन का इस्तकबाल करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि तारीखी भारत यूरोपीय आजाद तिजारती एसोसिएशन तिजारत और शराकतदारी से मुतालिक माहदे पर अमल दरामद के बाद दो तरफा तिजारत और सरमाएकारी में मजीद उसत पैदा करने के इम्कान मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत जैसे उभरते हुए शोबों में मौके का जायजा भी ले सकती हैं। इस एशाइये में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि केरलम में विजिनजम समुद्री बंदरगाह में तरक्याती कामों के जरिए किस तरह इस नजरिए को अमली शक्ल दी गई है।
2: विजिनजम बैन अलाक्वामी समंदरी बंदरगाह एक अहम बहरी मरकज के तौर पर उभर रही है, जो 2047 तक विकसित भारत के मुल्क के नजरिए को तकवीत दे रही है। ये बंदरगाह बैन अलाक्वामी ईस्ट वेस्ट बहरी तिजारती रास्ते के करीब एक इंतहाई अहम मकाम पर वाक़ है। यहाँ कुदरती तौर पर तकरीबन 20 मीटर गहरा पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों को भी संभालने की सलाहियत रखती है। बंदरगाह में तिजारती सरगर्मियां दिसंबर 2024 में शुरू हुई, जबकि मई 2025 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया। विजिनजम ने अपने पहले ही साल में 10 लाख TEUs का हिस्सा उबूर कर लिया, जबकि सिर्फ 18 माह में 20 लाख TEUs तक पहुंच गई। ये कामयाबी आलमी सतह पर एक अहम ट्रांसशिपमेंट मरकज के तौर पर इसकी तेजी से उभरती हुई हैसियत को जाहिर करती है। अगस्त 2026 में मुकम्मल तौर पर फ़ाल एग्जिम ऑपरेशन शुरू होने के बाद ये बंदरगाह अब भारतीय बरामदकारों और दरामदकारों को बराह रास्त समंदरी रास्ता फराहम कर रही है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिनजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। जो पैसा बाहर जाता था

0: वो केरला और मिजोरम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा।
1: विजिंचम बंदरगाह तिजारत, रोजगार और इक्तिसादी तरक्की के एक अहम मोहर्रिक के तौर पर उभर रही है और 2047 तक विकसित भारत के सफर में मुल्क के लिए अपना रोल अदा कर रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलुरुजी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
2: भारत ने अफगानिस्तान की इकतदार आला, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तई अपनी हमायत का इजहार किया है। भारत ने रूस के ज़ेर एहतमाम मॉस्को में मुनक़िदा अफगानिस्तान से मुतालिक 8वीं मॉस्को फॉर्मेट मुशावरतों के मौके पर अफगानिस्तान के आवाम की फलाह व बहबूद के तई अपने अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर भारतीय वफद की क्यादत रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और जॉइंट सेक्रेटरी PAI डॉ एम सुरेश कुमार ने की। इस मीटिंग में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। रूस की वजारत खारजा के मुताबिक शुरका ने मसावी और बाहमी तौर पर मफादात की बुनियाद पर काबुल के साथ ताउन और आलमी मईशत में अफगानिस्तान की शमूलियत की हमायत की जरूरत पर जोर दिया। यमन की बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमतों ने हौसियों के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज किया है। हुकूमती फोर्सेज ने बहर अहमर के साहिल से मुत्तसिल अहम स्ट्रेटजिक चौकियों के नज़दीक पेशकदमी का दावा किया है। यमन के सदारती लीडरशिप कौंसिल के सदर ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन का नाम दिया, जिसका मकसद हौसियों के कब्जे वाले इलाकों को दोबारा हासिल करना, सरकारी इदारों को बहाल करना और राजधानी सना का कंट्रोल दोबारा हासिल करना है, जो साल 2014 से हौसियों के जेर कंट्रोल है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने स्विट्जरलैंड के सदर गय पामेला के भारत दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विस सदर के दरमियान बातचीत से मुतालिक खबर को शाये करते हुए वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि आलमी अमन इदारों में इसलाह जरूरी है। स्विट्जरलैंड के सदर के इस तबसरे को भी अखबारात ने खसूसियत के साथ शाये किया है कि स्विट्जरलैंड भारत को अपना काबिले एतमाद और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुआविन मानता है। रोजनामा इनकलाब ने GST इस्लाहात से मुतालिक खबर को शाये करते हुए वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि GST इस्लाहात टैक्स निज़ाम को मजीद आसान बनाएगी।
2: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम की 1 लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। BJP ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश से अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। भारत ने अफगानिस्तान की इकतदार आला, खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हमायत का इजहार किया है और अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने अज़्म का इयादा किया है। बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 8:45:13। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे उदय कुमार मलिक से राग ललित।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत स्वरगंगा के एक कार्यक्रम में उदय कुमार मलिक का धमार गायन। राग था ललित। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में होने वाला शोध नहीं है। जब वैज्ञानिक ज्ञान किसी समस्या का समाधान करता है, नई तकनीक को जन्म देता है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, तभी उसका व्यापक सामाजिक महत्व सामने आता है। विचार से नवाचार, नवाचार से सामाजिक बदलाव, इस विषय पर सुनिए डॉक्टर कमलिका बैनर्जी और दिलीप झा की ये बातचीत।
1: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह नई नई जानकारियां नए नए विषयों पर उन तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि वो उन जानकारियों का लाभ उठा सकें और अपने आसपास के लोगों को, चाहने वालों को भी लाभान्वित कर सकें। हम सब जानते हैं कि आज बात हो रही है नवाचार की, नवाचार से बदलाव की, एक विचार परिवर्तन की, और बदलाव एक सामाजिक समझ के लिए भी, असामाजिक दायरे में रहने वाले लोगों के जीवन शैली के लिए भी।

0: ज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में होने वाला शोध नहीं है। जब वैज्ञानिक ज्ञान किसी समस्या का समाधान करता है, नई तकनीक को जन्म देता है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और प्रभाव लाता है, तभी उसका व्यापक सामाजिक महत्व सामने आता है। आज के समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, इन सब के बेहतर तालमेल और विकास की आवश्यकता है। इसमें एकेडमिए का, इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट का, सोसाइटी के बीच किस तरह की साझेदारी हो, किस तरह के एक स्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन हो कि एक इनोवेशन इकोसिस्टम का विकास हो सके, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कमलिका बनर्जी। डॉक्टर कमलिका जी ने IIT दिल्ली से PhD की है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा विज्ञान नीति के क्षेत्र में कार्य किया है। डॉक्टर कमलिका बनर्जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। हम इसी चीज से और आपसे मिलकर बहुत खुश हुए।
0: एक बात करते हैं कि आपने IIT दिल्ली से PhD में शोध किया है और वो भी विज्ञान नीति तथा इनोवेशन के क्षेत्र में काम भी किया है, तो आजकल जब इनोवेशन और पॉलिसी की बात करते हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा और वर्तमान में उसका क्या महत्व देखते हैं आप इनोवेशन कल्चर की और एक सोशल अंडरस्टैंडिंग की?
1: जैसे आपने शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन में ही विस्तृत तरीके से और अच्छे से बताया कि कैसे जो लैब में शोध हो रहा है उसको हम सामाजिक कार्यों में समाज के फायदे के लिए कैसे लेके जा सकते हैं, उसी में मेरा भी काम रहा है। आप उसे सामाजिक उद्यमी के तरीके से बोलिए या भारत सरकार के साथ जो मैंने काम किया है। तो बात यह है कि हम लैब में बहुत टाइम से बहुत अच्छा शोध हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लैब में ही रह गया है और वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज के दिन में ये गवर्नमेंट के तरफ से बहुत ज्यादा आया है और लोगों को भी लगता है कि ये जो शोध हो रहा है वो हम मार्केट तक कैसे लेके जाए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी उसमें मुश्किलें हैं, पॉलिसीज या जो आप कहें कि सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस, सिस्टम्स है ही नहीं जो मार्केट में ले जाने के लिए आसानी हो। वही चीज आज गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज और चेंजेस और रिफॉर्म्स लाई है जिससे ये चीज हो सके। और अभी भी बहुत समय है कि हम उस चीज तक पहुंच पाए, थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन अभी भी काफी रास्ता बाकी है, लेकिन भारत सरकार का एक पूरा प्रॉपर इंटेंट है कि हम ये कर पाएंगे और करेंगे और जरूर करेंगे।
0: आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि लैब टू सोसाइटी की बात की है आपने, लैब में जो काम हो रहा है सोसाइटी को उसकी जानकारी हो, उस कार्य का जो प्रतिफल है, रिजल्ट है, आउटपुट है, उसका फायदा समाज के लोगों को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट की बात की कि जिस तरह से कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी था उस तरह से साइंटिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात होती है उससे आगे बढ़ के भी कि एक एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस की भी बात की जा रही है। इन सब में आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव हुए हैं या बदलाव किए जाने की जरूरत है?
1: तो जैसे आप जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे और वो पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट होने की बात होती है। तो जो भी कोई प्रोग्राम या कुछ होता है, आपने जैसे ESG की बात की, तो वो भी UN SDG गोल्स के उसमें अंतर्गत ही आता है। और हर जो एक एप्लीकेशन, हर एक जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, शोध से जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें ESG और जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को माध्य में रख के और उसको एक सेंटर पॉइंट रख के सारा कार्य किया जाता है। अब जैसे हम पिछले उसमें बताएं कि जैसे शोध हुआ है प्रोडक्ट, लेकिन एक शोध को प्रोडक्ट बनाने में और उसको फिर मार्केट में पहुंचने तक एक बहुत लंबी जर्नी होती है और उसमें बीच में कहते हैं एक वैली ऑफ डेथ आता है। मतलब रिसर्च फ्रॉम लैब टू सोसाइटी पहुंचने में ही वो खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं बीच में। तो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, पॉलिसीज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात है कि ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसका इम्पैक्ट सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज समझना, देखना, करना जरूरी होता है। जो मैं इस कार्य में इन्वॉल्व रही हूँ और इसमें जरूरी है कि हम हर लेवल पे देखें कि कहाँ पे ये डेथ हो रही है और उसको हम रिकवरी में ला सके और चीजें एक्चुअली में एंड पॉइंट तक लोगों के इम्पैक्ट में पहुंच सके।
0: आपने बात की विज्ञान और नीति की, पॉलिसी की बात की थी और साइंस है जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसकी बात की है। विज्ञान नीति के क्षेत्र में आपने काम भी किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर्स के बीच बेहतर संवाद क्यों जरूरी है और अगर कुछ गैप्स हैं तो कहां आपको वो गैप दिखाई देता है और कैसे उसको प्रभावी बनाया जा सकता है?
1: ये गैप बहुत ज्यादा है, केवल विज्ञान और नीति के क्षेत्र के बीच में ही नहीं, आप इंडस्ट्रीज की बात करें, जो बिजनेसेस करते हैं, साइंटिस्ट की बात करें और पॉलिसी, इन तीनों में ही बहुत ज्यादा गैप्स है। और जो ऑडियंस है, मतलब जो एक्चुअली में वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनको भी समझ नहीं है। तो पूरे जो इकोसिस्टम के जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर

0: है, सब में बहुत ज्यादा गैप है और उसी को जोड़ना, उनको साथ लाना कि सब एक दूसरे की भाषा समझे, सब एक दूसरे की मदद कर पाए। जब भाषा समझेंगे तभी मदद कर पाएंगे। और वही मेरा भी काम रहा है अभी तक, जो मैं ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया है, और आगे भी जो मेरा काम रहा है उसमें एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर मेरा यही कोशिश रहा है कि मैं बिजनेसेस, साइंटिस्ट, आप जो CSR की बात कर रहे थे पहले, CSR और साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, कि हम हर एक डीप टेक साइंस, विज्ञान को लैब से बाहर निकालने के लिए समाज तक पहुंचे, और ये जो गैप्स है, लोग जो एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं, उनको साथ में कैसे लाया जाए, उसमें मेरा काम रहता है।
1: आपने बताया कि आपने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में भी काम किया है, उस अनुभव का लाभ वर्तमान में देखेंगे तो जो हमारी युवा है, इन लोगों को किस तरह से क्रिएटिविटी, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए उपयोग किया जाए, और इसके लिए क्या शिक्षा व्यवस्था में आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए?
0: जैसे आपको पता होगा कि नीति आयोग का एक स्कीम रहा है अटल इनोवेशन मिशन, जहाँ पे उन्होंने AIM के थ्रू बहुत ऐसा काम किया है जो आप सवाल पूछ रहे हैं, कि हम क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन के तरफ और मूव कर पाए। केवल ये स्कूल के लेवल पे ही नहीं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया था इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल्स। तो मैं दोनों में जुड़ी रही हूँ एज अ मेंटोर फॉर अटल इनोवेशन मिशन, एंड ऑल्सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये जो प्रोग्राम रहा है, उसमें मैंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्कूल में अभी भी मैं जाके मेंटोरशिप करती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी कैसे लाए, और वही चीज कि हम अब नई सोच और नए इनोवेशन और क्रिएटिव तरीके से डीप टेक साइंस के बारे में सोच सके, विज्ञान को बहुत अलग तरीके से सोच सके, वही मैं उन दो चीजों से करने की कोशिश करती रही हूँ।
1: आज का जो युवा है वो केवल रिसर्च करने तक नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास जो आइडियाज है उसको सोल्यूशन में भी बदला जाए और इनोवेशन में भी बदला जाए, और इनोवेशन के बाद वो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी जुड़े रहना चाहते हैं। इसको लेकर के आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है कॉर्पोरेट में, किस तरह के कोऑर्डिनेशन की जरूरत महसूस की जाती है आपको लगता है, और गैप अगर है तो कहाँ है?
0: जैसे आपने पिछले एक दशक में देखा होगा, 10 सालों में गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टार्टअप के स्कीम्स आए और हमारे देश में स्टार्टअप की बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले जैसे e-commerce बेस्ड एप्स बहुत अच्छे हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे डीप टेक स्टार्टअप्स आने लगे, और आज के दिन में जो रिफॉर्म्स आए हैं और बहुत गवर्नमेंट फंड्स दे रही है इन कोलैबोरेशन विद वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स को मिला के, नए रिफॉर्म्स, नए पॉलिसीज आए हैं गवर्नमेंट के, जैसे RDIF फंड आया है DST का बोलिए, या डीप टेक फंड्स ऑफ फंड्स आया है, या DPIIT भी अपने फंड्स लाया है डीप टेक के, कि अब केवल हम सिंपल स्टार्टअप्स की बात ना सोचे, डीप टेक साइंस और डीप टेक स्टार्टअप्स को हम मार्केट में कैसे ला सके, तो ये गवर्नमेंट कर रही है। और मैं अपने पर्सनल फ्रंट में भी क्या कर रही हूँ कि जैसे मैंने आपको CSR की बात की, कि मेरा ये मानना है कि CSR का जो पैसा है वो ऐसा पैसा है कि वो आपको लगाना ही है, तो उसको हम CSR को केवल थोड़ी थोड़ी छोटी छोटे प्रोजेक्ट्स में लिमिटेड ना रखे, उसमें डीप टेक साइंस को कैसे लाके उन प्रोजेक्ट्स को और अच्छा बना सके। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे एक हमने प्रोजेक्ट किया था CSR इम्प्लीमेंटेशन में, कि घर घर में तेल बच जाता है, खाने का तेल बच जाता है, मान लीजिए कि हर घर में 10 ml का तेल बच गया, तो आप मान लीजिए दिल्ली में कितने घर होंगे, कुछ 60 लाख घर है, तो टोटल आपके पास कितना तेल बच गया, ऐसे 10-10 ml हर घर से बचा और हमने कलेक्ट किया, तो हमारे पास कुछ 60,000 liter तेल रह जाता है, उसको आप बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वही चीज अभी हम क्या करते हैं, ड्रेन्स में डाल देते हैं और तेल है उसमें पानी रहता है, बायोडाइवर्सिटी आपकी अफेक्ट होती है, जो आपके माइक्रोब्स है वो मर जाते हैं। 60,000 liter अगर हम इसको बचा के बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करें तो क्या वो फायदा नहीं देगा लोगों को? तो ये एक CSR का हमने प्रोजेक्ट किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो पोल्यूशन डिटरेंट स्कीम, जिसको हमने कहा था ग्रीन सखी, हमने उसको लागू किया था। ये सोच कैसे आ सकती है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन करते समय बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, विज्ञान लोगों तक पहुंचे और अच्छा विज्ञान से हमारे देश का बहुत फायदा हो।
1: भारत सरकार ने अनुसंधान रिसर्च फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपया रखा है, जो RDI सिस्टम है वो उसको सिलेक्शन कंपनी स्टार्टअप के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी वो मिलता रहा है इंडिविजुअल साइंटिस्ट सबको। अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, खास करके विज्ञान के क्षेत्र में, तो इनोवेशन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में तो वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इन महिला वैज्ञानिकों या इनोवेटर्स जो हैं, इन लोगों को एक नेतृत्व का अवसर देने के लिए कुछ संस्थागत स्तर पर भी प्रयास किए जाने की जरूरत है, ताकि वो एक डिसीजन मेकिंग में भी आगे आ सके।
0: जी, और इस चीज में गवर्नमेंट हमेशा चाहते हैं कि विमेन आगे आए और इस चीज पे हमेशा एफर्ट्स रहा है। देखिए, ये ऐसी जर्नी है कि इसको काफी समय लगेगा, और अगर हम कुछ सालों से ही कंपेयर करें, हर बार हम देखते हैं कि नंबर बढ़ते हैं, हर बार हम देखते हैं कुछ ना कुछ विमेन एम्पावरमेंट या विमेन को सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स आती है, प्रोग्राम्स आते हैं, फंड्स आते हैं जिससे विमेन आगे बढ़ पाए। तो ये चीज हो रही है, स्टार्टअप्स में भी कितने विमेन को अवार्ड्स मिले हैं, फंड्स मिले हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, स्टार्टअप हो, साइंटिस्ट लेवल हो, सबको सपोर्ट मिल रहा है। और आज के दिन में तो ये घर घर में बातें होगी कि लड़कियों को आगे लेके जाना। आज के दिन में अगर आप बिजनेसेस भी देखें, कितनी लड़कियां आगे आई है, या आप गांव में भी देखिए कि लड़कियां ही अपना सोशल ग्रुप्स बना के आगे लेके जा रही है और खुद ही नेतृत्व कर रही है। तो देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है,
1: और निश्चित रूप से इसके लिए कुछ दायरों को भी तोड़ना पड़ेगा, और बढ़ते हुए सामाजिक सुधार और नीतिगत सुधारों की भी जरूरत पड़ेगी। ज्ञान तब और अधिक सार्थक बन जाएगा जब वह नवाचार का रूप लेकर समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान में योगदान देना शुरू करेगा, जिसके प्रयास अभी चल रहे हैं, कुछ सफलताएं भी दिख रही हैं। डॉक्टर कमलिका बनर्जी जी, आपने विज्ञान, नवाचार, नीति, युवाओं और महिलाओं से जुड़े हुए विज्ञान के क्षेत्र में उनके अवसरों, नीतियों और सफलताओं की बात की। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कुछ विज्ञान जगत की बातें। चमगादड़ दुनिया के इकोसिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वे पौधों में परागण करते हैं, बीज फैलाते हैं और बड़ी संख्या में कीड़े मकौड़े खाते हैं। पृथ्वी के इतिहास में उड़ने वाले रीढ़धारी जीवों के केवल 3 समूहों में से एक चमगादड़ों की आज 1500 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए उनका विकासवादी इतिहास एक पहेली जैसा रहा है। चमगादड़ों के जीनोम और जीवाश्म पर अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त स्टडी से अब कुछ स्पष्टता मिल रही है। इसके नतीजों से पता चलता है कि उड़ने वाले ये स्तनधारी जीव सबसे पहले यूरोप में लगभग 6.5 करोड़ साल पहले दिखाई दिए थे। स्पेसएक्स का एक रॉकेट गुरुवार 1 अक्टूबर को फ्लोरिडा से 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों, 1 कनाडाई अंतरिक्ष यात्री और 1 रूसी अंतरिक्ष यात्री के दल के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। ये मिशन कक्षा में मानव स्वास्थ्य और प्रदर्शन को समर्पित एक वैज्ञानिक मिशन के लिए है। मेडिकल साइंस और न्यूरो साइंस की दुनिया में क्रांति लाने वाली खोज के लिए साल 2020 का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के लिए इस साल का कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन वैज्ञानिकों का ये सम्मान ऑप्टोजेनेटिक्स और लाइट गेटेड आयन चैनल्स पर उनकी खोजों के लिए मिला है। इसकी मदद से वैज्ञानिक अब रोशनी के जरिए मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जिससे पार्किंसंस और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की दिशा में नए रास्ते खुल गए हैं। उन्होंने शैवाल से मिले प्रोटीन की मदद से रोशनी द्वारा न्यूरॉन सेल्स को नियंत्रित करने की तकनीक विकसित की है। इन वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि आनुवंशिक रूप से संशोधित करके मस्तिष्क के विशिष्ट न्यूरॉन्स में इन लाइट गेटेड आयन चैनल्स को डाला जा सकता है। इसके बाद सिर्फ लेजर या ऑप्टिकल फाइबर की एक साधारण फ्लैश से पलक झपकते ही इन न्यूरॉन्स को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। अब ऑप्टोजेनेटिक्स की मदद से वैज्ञानिक पार्किंसंस रोग, मिर्गी, डिप्रेशन, अंधापन और नशे की लत जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सटीक अध्ययन कर पा रहे हैं। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके तुहाडी सेवा विच हाजिर है हरजीत कौर। जिवें कि तुसी जानदे हो, अज श्री गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत दिवस है। श्री गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत दिवस सिखां दे प्रथम गुरु दे ज्योति जोत समाउण दी याद विच मनाया जांदा है। 1539 च गुरु नानक देव जी करतारपुर विखे रावी नदी दे कंडे ते ज्योति जोत समाए सन। उन्हां दी सारी जिंदगी मनुखता दी सेवा ते अध्यात्म दे प्रसार च बीती। ए दिन श्री गुरु नानक देव जी दे महान उपदेशां, सच, बराबरी ते भाईचारे दे सुनेहां नूं याद करन दा दिन है। उन्हां दे सुनेहे अज दे समाज च प्यार, सद्भावना ते सेवा दी राह विखाउंदे ने। उन्हां दा ए सुनेहा नाम जपो, किरत करो, वंड छको, अज वी सानूं इमानदारी नाल मेहनत करन, परमात्मा दा नां जपन ते लोड़वंदा दी मदद करन दी प्रेरणा देंदा है। इस मौके ते गुरुद्वारियां च खास दीवान सजाए जांदे ने, गुरबाणी कीर्तन हुंदा है ते लंगर लाए जांदे ने। इस संबंध विच अज दे प्रोग्राम च असीं तुहानूं श्री गुरु नानक देव जी दे ज्योति जोत समाउण दे दिवस ते कल गुरुद्वारा नानक प्याऊ दिल्ली विखे होए समागम च रिकॉर्ड कीते गए शब्द कीर्तन दी रिकॉर्डिंग तुहानूं सुनवा रहे हां। लो, सरवण करो।

0: मैं तुसें प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी दे ज्योति जोत दिवस दे संबंध विच कल गुरुद्वारा नानक प्याऊ विखे आयोजित कीते गए गुरबाणी कीर्तन दी रिकॉर्डिंग सुन रहे सी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। श्री गुरु नानक देव जी दे ज्योति जोत दिवस ते उन्हां नूं कोटी कोट नमन। वाहिगुरु जी दा आशीर्वाद सारियां ते बनिया रहे। आओ असी उन्हां दे आदर्शां नूं जिंदगी च अपनाउण दा संकल्प लईए ते इस दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा ए। अगले प्रोग्राम च फिर मिलांगे। उदों तक लई हरजीत कौर तुहाडे तों इजाजत चाहुंदी ए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक और आइए अब सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय

ये आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर

0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे। फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 148 अंक बढ़कर 72,531 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 54 अंक की वृद्धि के साथ 22,610 पर पहुंचा। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में भारत का सामना आज उरुग्वे से होगा। मुकाबला सॉल्ट लेक के युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhurtham and Dharapuram assembly seats, in Puducherry for Thattanchavadi assembly seat and Rejinagar and Nandigram assembly seat in West Bengal. The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the names of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radha Kant Oja, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by election to a lone seat in West Bengal will be held on 16th of this month. The elections will cover 10 seats from Uttar Pradesh and 1 from Uttarakhand. Defence Minister Rajnath Singh will launch Fleet Support Ship 1 and lay the keel of Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam today. He will also inaugurate the upgraded Slipway 4 and 300-ton Goliath crane. Defence Ministry said that the minister will also mark the delivery of the 2000th Aero Engine by Hindustan Aeronautics Limited, Koraput Division in Orissa today. A report.
2: The upgraded Slipway 4 with its extended length, enhanced load-bearing capability will enable the shipyard to build and launch vessels up to 45,000 deadweight tonnage. This will significantly expand its capacity to undertake large and complex

जी हाँ दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें बस गुजर जाने दें। कुछ पल होते हैं जो बस गुजर जाते हैं, और कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहें तो अपने दिन की नई शुरुआत बना सकते हैं। जिंदगी भी अजीब है, कभी एक छोटी सी धुन मूड बदल देती है, एक नई बात सोच का दरवाजा खोल देती है, और कभी कोई छोटा सा फैसला हमें अपने ही कल से थोड़ा आगे ले जाता है। तो आज क्यों ना इसी पल को थोड़ा खास बनाया जाए, कुछ नया सुना जाए, कुछ नया जाना जाए, और अपने भीतर छिपी उस आवाज़ को थोड़ा सा मौका दिया जाए जो कहती है चलो आज कुछ अलग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आज गीत सिर्फ कानों तक नहीं आएंगे, उनके बीच कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो शायद आपके दिन में एक नया ख्याल छोड़ जाए। तो फिर देर किस बात की, आवाज बढ़ाइए, मन को हल्का कीजिए और संगीत को अपनी तरफ आने दीजिए।

दोस्तों कितनी खूबसूरत बात है ना, एक धुन बजती है और हमारा ध्यान अचानक उसी तरफ चला जाता है। हम सोचते हैं कि हम गीत सुन रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग भी उस संगीत के

साथ कदम मिला रहा होता है। वह अगली धुन का अनुमान लगाता है, लय को पहचानता है और इसी छोटे से खेल में हमें आनंद मिलता है। शायद इसी वजह से कुछ गीत पहली बार में ही अपने लगने लगते हैं। तो आज अपनी पसंद की सूची में एक नया नाम जोड़ने की कोशिश कीजिए। किसी ऐसे गीत को सुनिए जिसे आपने कभी सचमुच ध्यान से नहीं सुना। क्या पता अगली पसंद पहले से कहीं अलग हो। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम को, ले चलते हैं अगले दौर में और लेते हैं आप लोगों के संदेश। आप हमें अपने पसंद के संदेश भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। आइए लेते हैं आपके प्यारे प्यारे संदेश और आपकी फरमाइश पर चुनते हैं अगला गीत। पहला गीत आरक्षण फिल्म से झटक कर जुल्फें जब तुम तौलिए से, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल जी इस गीत की फरमाइश के साथ हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू जी ने हमें संदेश भेजा है। नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए, खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देती है। ये संदेश हमें भेजा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी ने। इन्होंने भी हमें आपकी कसम फिल्म से किसी भी गीत की फरमाइश की है। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी जी दुर्गाई सेलू से हमें संदेश भेज रहे हैं। और अदालत फिल्म से ओ तुमसे दूर रह के गीत की फरमाइश के साथ इन्होंने हमें संदेश भेजा है। हम कोशिश करेंगे आपके संदेशों और आपकी फरमाइश को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कुशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज भी हमें संदेश भेज रही हैं। नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से। इसके अलावा जो अगला संदेश हमें मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू जी ने हमें संदेश भेजा है। और अगला जो संदेश हमें मिला है पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। और मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मरेकर हमें संदेश भेज रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार जी हमें संदेश भेज रहे हैं। और अगला जो संदेश हमें मिला है वो हमें मिला है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराम भोजने, पुजानची नवानकर और मोहन करांगले जी हमें संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों आपके संदेश हमें इसी तरह मिलते रहें और हम आपको आपकी पसंद के प्यारे प्यारे गीत सुनाते रहें। इसी ख्वाहिश के साथ आइए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का अगला नगमा।

तो दोस्तों, कैसा लगा ये गीत? मुझे उम्मीद है आपको ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। और यहीं से निकलती है एक छोटी सी बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी। दोस्तों, नई चीज़ों के लिए हमेशा नई ज़िंदगी नहीं चाहिए, कभी कभी उसी ज़िंदगी में थोड़ा सा नया नज़रिया काफ़ी हो सकता है। वही रास्ता हो सकता है, वही काम हो सकता है, वही दिन हो सकता है, बस उसे देखने का तरीका बदल दीजिए। क्योंकि बदलाव कई बार बाहर नहीं, हमारी नजर के भीतर शुरू होता है। और इसी नए नजरिए के साथ अब सुनते हैं अगली पसंद, अगला संदेश। कोई गीत सुना दे। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी जी का संदेश आया है। अगला जो संदेश हमें मिला है, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी जी ने हमें संदेश भेजा है। और नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, मारहरा दरवाज़ा एटा से हमें किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की ख्वाहिश के साथ ये संदेश भेज रहे हैं। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान भी हमें संदेश भेज रहे हैं। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, तुर्केश्वरी राखी, तृप्ति जायसवाल जी भी हमें जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष जी हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है, वो हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव जी ने हमें संदेश भेजा है। और इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया जी और वेद बाबू कठेरिया जी समस्त कठेरिया परिवार के साथ हमें संदेश भेज रहे हैं। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से। अगला जो संदेश हमें मिला है, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष्टी व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से संदेश भेज रहे हैं। और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान अब्बान और समस्त अब्बासी परिवार ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा जी हमें दादरी गेट भिवानी से यह संदेश भेज रहे हैं। और फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरीन, फरान, पारिया, ताहिरा, कस्बा, गुन्नौर, यूपी से हमें संदेश भेज रहे हैं। इनकी पसंद का गीत हमें सुना दीजिए, ये हमें संदेश भेज रहे हैं। आपकी कसम गीत है जिंदगी के सफर में। चलिए, हम कोशिश करेंगे आपकी पसंद का ख्याल रखने की और अपने कार्यक्रम में आपके पसंद के गीत को शामिल करने की। फाजिल्का पंजाब खेड़ा, परवार भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, गीत जिस पद पे चला, आवाज लता मंगेशकर, फिल्म यादगार। चलिए, हम आपके गीत को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। और ये जो संदेश हमें अगला मिला है, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन जी का, मुल्लापुर दाखा से। पीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, पिट्टा बजाज कालका से हमें संदेश भेज रहे हैं। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये संदेश हमें मिला है। लेवाई छत्तीसगढ़ से गोपाल दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी जी हमें संदेश भेज रहे हैं। विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम आशीष विश्वकर्मा जी भी हमें बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें संदेश भेज रहे हैं। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हमें संदेश भेज रहे हैं। बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट जी, सीताराम कांगड़ा और एकता कॉलोनी रोहतक से हमें संदेश भेज रहे हैं। आपके संदेश हमें लगातार मिलते जा रहे हैं और इसी कड़ी में बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में। हम सब के पास कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम लगातार आगे खिसकाते रहते हैं। कल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, लेकिन कल की जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है ना दोस्तों, कि वह आते आते आज बन जाता है। इसलिए आज कोई बहुत बड़ा संकल्प मत लीजिए, बस एक छोटा सा काम चुनिए और शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि पहाड़ देखकर कदम रुक सकते हैं, लेकिन अगर नजर सिर्फ अगले कदम पर हो तो रास्ता आसान लगने लगता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, बस रुकनी नहीं चाहिए। और इसी छोटी सी बात के साथ लेते हैं अपना अगला संदेश, जिसे हमें भेजा है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव जी ने अपनी अगले गीत की फरमाइश के साथ। और अगला जो संदेश हमें मिला है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू जी ने हमें ये संदेश भेजा है। सुबह सिर्फ सूरज निकलने का नाम नहीं, ये बीती बातों को पीछे छोड़कर जिंदगी को फिर से मुस्कुरा कर जीने का मौका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती और जिंदगी में मुस्कुराने का मौका ढूंढते रहना चाहिए। अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है राजू अग्रवाल, विवेक चौधरी जी ने हमें, चौधरी वास जी ने, चरणदास जी ने हमें संदेश भेजा है। और कुड़ी सेक्टर 5 से भी हमें संदेश आया है। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुडांडे, अर्चना ताई गुडांडे ने, हीरामणि शंडे जी ने और प्रणय प्रसिद्धि जी ने हमें ये संदेश भेजा है। किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश के साथ ये संदेश भेज रहे हैं। आपका हर पल खुशियों से भरा हो, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, ऐशी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा, ये संदेश हमें भेजा है। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश शक्ताप जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इन्होंने फरमाइश की है वादा कर ले सजना साजना, हाथ की सफाई फिल्म से। जी हम कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश को पूरा करने की। और अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता जी ने गांव नथाना से हमें संदेश भेजा है। और अगला जो संदेश हमें भेज रहे हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर से हमें ये संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है वो अहमद भाई फूलवाले की तरफ से, दुखना सदर जूही, इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, छोटी बलिया, मुंबई, करजा से हमें संदेश भेज रहे हैं। और कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हमें आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद फूलवाले जी हमें संदेश भेज रहे हैं। इन्होंने भी हमें किसी गीत की फरमाइश के साथ ये संदेश भेजा है। दुर्गेश जी नमस्कार, राजू अग्रवाल, चरणदास, रेखा, चौधरी वास जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। और राजू अग्रवाल, पंकज, प्रीति जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचिता खुराना, केशु रिधान खुराना जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार जी ने हमें संदेश भेजा है। इसके अलावा हमें संदेश भेजा है अनिल मोहन जी ने, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमें, इन्होंने ये संदेश भेजा है। दोस्तों आपके संदेश ना कई बार हमें एक ही संदेश बार बार मिलता है और हम हर कार्यक्रम में आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपना संदेश एक बार भेजा करें, हम आपके संदेश को पूरी कोशिश के साथ अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके जो संदेश बार बार रिपीट होते हैं उससे कई सारे श्रोतागणों के मैसेज हमें मिल नहीं पाते और वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने संदेश एक बार हमें भेज दें। अगला जो संदेश हमें मिला है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी जी ने भेजा है। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर और रिजवाना परवीन जी ने भी हमें संदेश भेजा है। फरमाइश करते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावा से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादिब खत्री जी हमें संदेश भेज रहे हैं। जामा मस्जिद रोड से हाजी इसहाक लुलाल मानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। और जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार भी हमें संदेश भेज रहा है। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी जी ने हमें संदेश भेजा है। और अगला जो संदेश हमें मिला है मंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों आपके संदेश यूं ही हमें मिलते रहें और हम आपके संदेशों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहें। बस इसी ख्वाहिश के साथ लीजिए सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।
2: जुल्फ से

दोस्तों, कभी कभी हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। हर दिन अच्छा हो, हर काम समय पर हो, हर फैसला सही हो, लेकिन जिंदगी कोई ऐसी किताब तो है नहीं जिसमें हर पन्ना एक जैसा खूबसूरत हो। कुछ पन्ने हल्के होंगे, कुछ उलझे हुए, और कुछ ऐसे जिन्हें पलटते हुए हम खुद भी मुस्कुरा देंगे। दोस्तों, बस कोशिश इतनी रहे कि कहानी वहीं ना रुक जाए। एक खराब दिन पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होता। कल फिर एक नया पन्ना खुल सकता है, और अब उस नए पन्ने के नाम हम लेते हैं अगला संदेश। ये संदेश हमें भेजा है हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने, जमशेदपुर से, स्टेशन रोड से। इनके साथ हमें संदेश भेज रहे हैं एंजल भाटिया, सुन्नू भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया जी भी हमें संदेश भेज रही हैं। नगर निगम वार्ड नंबर 28, नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार से हमें संदेश भेज रही हैं, मोहम्मद आसिफ खान और निकट परवीन। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है, डॉक्टर सोनम सना और अदीबा जी ने हमें चमन पार्क दिल्ली से संदेश भेजा है, टाउनशिप सेक्टर 8 से महेंद्र चौधरी, लक्ष्मी छाया और महिमा चौधरी खंडवा से दुर्गा खलासी और राकेश खलासी जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जी हमें जसपुर उत्तराखंड से संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश मिला है, शांति नगर सोनीपत से हमें मिला है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जी ने हमें संदेश भेजा है। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और प्यारा सपोता जीवियम जैन जी भी हमें मलियाना सरथना मेरठ से हमें संदेश भेज रहे हैं। सुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन जी भी हमें संदेश भेज रही हैं। आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत हमें सुना दीजिए। ये संदेश के साथ पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक सा अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश कौर, शादाब खत्री जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है, वो मिला है छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, सलाम राइन और उमर खेड़ा से भाई सिराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। जगमोहन प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन और भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामा नंद कश्यप जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। ये संदेश हमें मिला है लौह डाडा जिला बागपत से, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी जी भी हमें संदेश भेज रही हैं। चलिए, आप लोगों की फरमाइश पर ही हम अपने कार्यक्रम में गीत शामिल करते हैं और उसी श्रेणी में, उसी संगीत की श्रृंखला में आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों ले लेते हैं चलते चलते कुछ और संदेश जो हमें भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी ने हमें ये संदेश भेजा है। और अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से, हमें इन्होंने संदेश भेजा है। और अगला जो संदेश हमें मिला है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा जी तत्रंगी के बाटापारा से हमें संदेश भेज रहे हैं। शिवाजी नगर वड़ाबी देशमुख से राजेश खोबर केड़े, शिवसागर इंद्राबाई दीपाली खोबर केड़े जी हमें संदेश भेज रहे हैं। और खांडवी बुलढाड़ा से दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े, और तिलोरी अमरावती से हमें सुनैना पवन बॉन्डे और तनुज पवन बॉन्डे जी हमें संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों अगला जो संदेश हमें मिला है पुष्पेंद्र कुमार यादव जी का मिला है, जिला शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद से हमें इन्होंने संदेश भेजा है। परदेस फिल्म के दो दिल मिल रहे हैं गीत की फरमाइश के साथ इन्होंने हमें संदेश भेजा है। अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, जगमोहन जी ने लाहौर डोडा जिला पद बागपत से हमें संदेश भेजा है। दोस्तों कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है तो हम आपको बताएं गीतों का ये जो सिलसिला है अब अपनी मंजिल की ओर है। उम्मीद है इन दिनों के साथ कुछ नए ख्याल भी आपके साथ चल पड़े होंगे। शायद आज कोई गीत आपको अच्छा लगा हो, कोई बात मन में ठहर गई हो, या फिर यूं ही चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई हो। बस उस मुस्कान को संभाल कर रखिएगा क्योंकि जिंदगी हमेशा बड़े पलों से खूबसूरत नहीं होती। कभी एक प्यारा सा गीत, कभी किसी अपने की आवाज़, कभी कोई नया ख्याल और कभी बिना किसी वजह के मिली खुशी भी दिन को खास बना देती है। तो अगली मुलाकात तक इतना याद रखिए, हर दिन को बदल पाना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ खूबसूरत तलाश लेना शायद हमारे हाथ में ज़रूर है। मैं हूँ दुर्गेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे थे, एक्चुअली समय इजाज़त नहीं दे रहा है आपके साथ और बातें करने की, तो अभी आपकी पसंद के गीत हम यूं ही बजाते रहेंगे, आपकी अपनी धुन यूं ही मुस्कुराती रहे और जिंदगी के हर अगले मोड़ पर आपको कुछ नया सुनने, कुछ नया सीखने और कुछ नया महसूस करने की वजह मिलती रहे। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, फिर सुनेंगे आपकी पसंद, आपकी फरमाइश और संगीत के उन्हीं खूबसूरत सुरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस गीत के साथ कार्यक्रम में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। और आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण

कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की

भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इसके लिए विपक्षी पार्टियां देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अपमानजनक बातें कह रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। श्री पात्रा ने आगे कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 25 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति बोला टिनुबु ने हादसे की पुष्टि करते हुए नाइजीरियाई वायुसेना को दुर्घटना के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। और अब कुछ खेल खबरें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में आज भारत और उरुग्वे आमने सामने होंगे। मैच सॉल्ट लेक के युवा भारतीय क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 11:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुरमंश्री के कार्यक्रम में सलीम अहमद का बजाया सितार वादन। राग है गुजरी तोड़ी, आलाप मध्यले 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं नौशाद अहमद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुरमंचरी के कार्यक्रम में सलीम अहमद का बजाया सितार वादन। राग था गुजरी तोड़ी, मध्य लय तीन ताल में निबद्ध थी। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे थे नौशाद अहमद। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, TRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम घर आंगन। 1:10 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही कलाकार हम आपको सुनवाएंगे 2:30 पर, और उर्दू मजलिस कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 3:30 पर। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में इस सूचनाओं का सिलसिला जारी रहेगा 4:10 पर, और कार्यक्रम युववाणी हम आपको सुनवाएंगे 4:15 पर। श्रोताओं, ये थे आज के शेष कार्यक्रम, और आइए सुनते हैं समाचार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 decades से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता

0: संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं।

0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनोबो ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defence Minister Rajnath Singh today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. The upgraded Slipway 4 along with the new crane will enable the shipyard to build and launch vessels of up to 45,000 DWT. This will increase its capacity to undertake the construction of larger vessels. Fleet Support Ship 1 is the first of 5 fleet support ships being built for the Indian Navy. The 43,500-ton ship entered the waters of the Bay of Bengal 18 months after the commencement of steel cutting. The fleet support ships will provide fuel, water and other supplies to Indian Navy warships at sea, helping them remain deployed for longer periods. The keel laying of Fleet Support Ship 5 marks further progress in the construction of the series. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madurantakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi and Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nagaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. Opposition parties held a protest march today from Parliament House to the Nirvachan Sadan, headquarters of the Election Commission of India, over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR process and the demand to sack Chief Election Commissioner CEC Ganesh Kumar. However, while heading towards the Election Commission, security personnel stopped them near Akashwani Bhavan. Congress President and Leader of Opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, Leader of the Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, and opposition MPs from other parties staged a sit-in on Parliament Street. The BJP today hit out at the Congress Party, alleging that a sponsored attempt is being made by opposition parties, especially the Congress, to create an atmosphere of anarchy in the country. Talking to media in New Delhi, BJP national spokesperson Sambit Patra said the opposition parties are making derogatory remarks against the country's constitutional bodies in a sponsored manner.
2: अभी कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है।
3: For several weeks now, election commission has been attacked. From time to time, attacks were made on Indian Army, India's Supreme Court, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Indian Hindus and EVMs. We believe that the Congress Party is still trying to create anarchy and an atmosphere of disorder in the country by using the election commission. Before the so-called rally and march take place, it is our responsibility as a political party to accurately place the issue before the people of the country and explain what is happening in the election commission and what is happening in the matter before the Supreme Court.

हर आंगन। कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंफ्रास्ट चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। तुम मृद मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा, तुम नंदन वन घन विटप और मैं सुख शीतल तल शाखा, तुम प्राण हो मैं काया, तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म और मैं मनमोहिनी माया, और मैं मनमोहिनी माया।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और दोस्तों, रोज़ रात में जब हम आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो दिल में अक्सर एक सवाल आता है कि आखिर ये तारे बने किस चीज़ से हैं, इनका तापमान क्या होगा। आज से करीब 100 साल पहले इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिक थे मेघनाथ साहा। जी हाँ, 6 अक्टूबर 1893 को ढाका के एक छोटे से गांव में जन्मे मेघनाथ साहा दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की कतार में खड़े होने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने 1920 में एक ऐसा फॉर्मूला दुनिया को दिया जिसे दुनिया साहा आयनीकरण समीकरण के नाम से जानती है। इस समीकरण ने वैज्ञानिकों को ये बताया कि करोड़ों मील दूर चमकते सूरज और तारों का तापमान क्या है और वे किन गैसों से बने हैं। इससे खगोलविदों को तारों के प्रकाश और स्पेक्ट्रम को का अध्ययन करने और उसके वास्तविक तापमान, दबाव और रासायनिक संरचना का सटीक पता लगाने में मदद मिली। मेघनाथ साहा ने कोलकाता में साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, इंडियन फिजिकल सोसाइटी और साइंस एंड कल्चर पत्रिका की शुरुआत भी की। इसके साथ ही राष्ट्रीय योगदान की अगर इनकी बात करें तो वे भारत के राष्ट्रीय शक पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर में सुधार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी रहे। विज्ञान के साथ साथ वे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रति भी समर्पित रहे। वर्ष 1952 के लोकसभा चुनाव में वे निर्दलीय सांसद चुने गए और संसद में देश की औद्योगिक और वैज्ञानिक नीतियों पर खुलकर इन्होंने अपने विचार रखे। तो आज उनकी जयंती पर हम सब उन्हें और उनके कार्यों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें तारों को देखने का एक अलग ही नज़रिया दिया।

तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता और रफ़ी की आवाज़ में। दोस्तों, हर सुबह जब हम अपनी उंगलियों से चाय का कप थामते हैं या बिना सोचे ज़्यादा कुछ बिना सोचे सीधे कदमों से सड़क पर चल पड़ते हैं तो हमें ये सब कुछ समाने लगता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए सिर्फ एक उंगली को हिलाना या एक कदम आगे बढ़ाना किसी पर्वत को लांघने जैसा होता है, क्योंकि वो पीड़ित होते हैं मानसिक पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से। ये कोई संक्रामक रोग नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी विकार है जो मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक संतुलन, मांसपेशियों के समन्वय और चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये समस्या मस्तिष्क के उस हिस्से में चोट या असामान्य विकास के कारण होती है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस स्थिति की सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर भले साथ ना दे रहा हो लेकिन भीतर जो मन है, जो सपने हैं, इनकी मासूम मुस्कान वो वैसी की वैसी होती है। ये बच्चे कमजोर नहीं हैं, ये वो योद्धा हैं जो हर पल अपनी ही मांसपेशियों से एक खामोश जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन सही समय पर मिली फिजियोथेरेपी, असिस्टिव डिवाइसेस और सबसे पढ़कर अपनों के साथ से ये बच्चे आत्म

निर्भर बन सकते हैं, लेकिन दवा और थेरेपी से भी ज़्यादा बड़ी दवा ये है जो कि समाज को देनी है, और वो है स्वीकारिता। इन्हें हमारी दया की बैसाखियाँ नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें चाहिए हमारा साथ। इन्हें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ इनके लड़खड़ाते कदमों को देखकर कोई हंसे नहीं, बल्कि इनका हाथ थाम ले। तो आज 6 अक्टूबर को विश्व मानसिक पक्षाघात दिवस के रूप में हम मना तो रहे हैं, लेकिन हम अपने नज़रिए में एक बदलाव करना, मतलब हमें चाहिए कि इन बच्चों को एक बेहतर समाज देने का संकल्प हमें करना है।

अनजाना फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता और मुकेश को। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर लिखेगा, और लिखने के लिए हमारा मेल आईडी वही fmgoldga@gmail.com। तो हमें आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतज़ार है, जो आपके मन में हो हमें ज़रूर लिखिए। और अब बात हमारे देश के गौरव की, हजारों वर्षों के संघर्ष और हमारी जीवटता के एक प्रतीक की। ये कहानी है गुजरात के मोढेरा गांव में स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में किया है, क्योंकि इस साल मनाया जा रहा है इस मंदिर के 1000 वर्ष पूरा होने पर इसका सहस्राब्दी वर्ष। इसका निर्माण 1025 ईस्वी में राजा भीमदेव ने कराया था, और फिर आज से ठीक 1000 साल पहले यानी 1026 में जब विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ को लूटा, तब उन्होंने मोढेरा के इस अद्भुत सूर्य मंदिर को भी तहस नहस कर दिया था। फिर राजा भीमदेव प्रथम ने न सिर्फ दुश्मनों को खदेड़ा, बल्कि बहुत कम समय में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। हमारे पूर्वजों के हार न मानने वाले इसी जज्बे के कारण आज ये मंदिर उसी भव्य रूप में खड़ा है। यानी ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी जीवटता और कभी न टूटने वाले हौसले का भी प्रतीक है। इसके विजयोर वास्तुकला की अगर बात करें तो सावन भादो में सूर्य की पहली किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में पड़ती हैं। इसके ठीक सामने एक विशाल सीढ़ीनुमा कुंड है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इसमें पानी तक उतरने के लिए अलंकृत सीढ़ियां और लगभग 108 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसके खंभों पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है, जिन पर 12 महीने के अनुसार सूर्य के 12 रूपों और पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह ऐतिहासिक सूर्य मंदिर आज मोढेरा गांव के सौर्य परियोजना का वैचारिक प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ तकनीकी रूप से भी इसका एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिससे यह गांव आज देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन चुका है। यानी जहां कभी पत्थरों पर सूर्य की पहली किरण देश को चमकाती थी, आज उन्हीं की रश्मियों से पूरा गांव रोशन हो रहा है। इतिहास की विरासत और आधुनिक विज्ञान का ऐसा सस्टेनेबल तालमेल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो आज इस मंदिर के बारे में जानने के बाद हमें जब भी अवसर मिले इस ऊर्जावान विरासत को देखने ज़रूर जाना चाहिए, और अपने जीवंत इतिहास और इसके प्रतीक को, ताकि हम स्वयं अनुभव कर सकें।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी अप्रैल फूल और आवाज़ें थी रफ़ी और सुमन सुमन कल्याणपुर की। दोस्तों, प्रतिभा कभी बेकार नहीं जाती, किसी न किसी रूप में वो काम ज़रूर आती है। यूपीएससी प्रतिभा सेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित एक ऐसा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे यूपीएससी ने अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने से चूक जाने वाले उम्मीदवारों को हित में रखकर इसे शुरू किया है। इसके माध्यम से आयोग ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने में मदद करता है जो यूपीएससी की परीक्षा के सभी पड़ावों में शामिल होते हैं, लेकिन सभी चरण पूरे करने के बाद थोड़े से अंतर से चूक जाते हैं और अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाते। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उन प्रतिभावान उम्मीदवारों का डाटा निजी कंपनियों के साथ शेयर किया जाता है और इसके लिए पहले उम्मीदवारों की सहमति ली जाती है, फिर उम्मीदवारों को की शैक्षणिक योग्यता, संपर्क विवरण समेत उनका बायोडाटा निजी कंपनियों को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि प्रतिभा बेकार नहीं जानी चाहिए। तो अगर आप में प्रतिभा है तो रास्ते और भी हैं, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा अवश्य खुलेगा। बस जो भी कीजिए दिल से कीजिए और सफलता ज़रूर मिलेगी।

अभी आपने ये गीत सुना रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म थी गहरा दाग। और त्योहारों का मौसम आते ही हमारे घरों में रौनक आ जाती है, साफ़ सफाई, नए कपड़े और पकवान, शॉपिंग की लिस्ट। इन त्योहारों में अपने अपने अपने घर के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते हैं, और ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को हकीकत में बदलने का अवसर भी है। देश की मिट्टी में रचे बसे प्रकृति के अनुकूल और अपनापन लिए हुए स्वदेशी सामान हमारा मन मोह लेते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति और परंपरा के मूर्त रूप होते हैं। इसमें हमारा प्राचीन कौशल छुपा होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है और अपने समुदाय, अपने देश, अपने क्षेत्र विशेष की कहानी कहता है। स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, पर्यावरण सुरक्षा और अपनी पहचान। जब हम स्वदेशी सामान खरीदते हैं तो हम सिर्फ एक वस्तु घर नहीं लाते, बल्कि देश की किसी दूसरी माँ या बहन की रसोई की खुशियों में शामिल होते हैं, उनका चूल्हा जलाने में ये सहायक होते हैं। यानी स्वदेशी सामानों की बिक्री जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, स्थानीय बुनकरों, कामगारों को रोज़गार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे उन्हें अपने काम को करने में और भी उत्साह और खुशी आती है। इसी से हमारे देश की विरासत, संस्कृति और परंपरा को फलने फूलने का अवसर भी मिलता है। तो इस बार अपने लिए, अपने घर के लिए जो भी खरीदें, स्वदेशी ही खरीदें। यानी इस बार जब हम करवा चौथ की चूड़ियां या दिवाली के दिए खरीदने निकले, तो मॉल की महंगी चमचमाती लाइटों के बजाय हमारी गली के नुक्कड़ पर बैठे उस कुम्हार के मिट्टी के दिए खरीदें, जो साल भर इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। और इसी तरह घर सजाने के लिए वंदनवार या तोरण लें, तो किसी स्वदेशी प्लास्टिक के सामान को ना लें। और हमारी जो बहन है या कोई स्वयं सहायता समूह द्वारा जो हाथ से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती हैं, उन्हें इस अवसर पर ज़रूर खरीदें और अपनी परंपरा और इस स्वदेशी सामान को चुनें। तो इस बार घर का कोना कोना स्वदेशी की खुशबू से महकेगा, ऐसा हम संकल्प लेते हैं।

अभी आपने ये गीत सुना सुहाना सफ़र फिल्म से आशा भोसले और रफ़ी की आवाज़ में। और कुछ मेल हमारे पास आ चुके हैं आप लोगों के, आप लोग प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और जो ये पहला मेल मेरे सामने है ये है चरण दास जी का। ये कह रहे हैं रेणु जी नमस्कार, और FM गोल्ड के प्रस्तुत कर जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोज़ाना सुनते हैं, और भाई सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी फनकार स्वस्थ रहें। तो ये आपने लिखा है बिल्कुल सभी लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कार्यक्रम इसी तरह सुनते रहिए। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा मेल है ये है उमेश कुमार का, और ये लिखते हैं कि घर आंगन प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ जो जानकारी दी जा रही है वो भी बहुत अच्छी है, और

जो है ये प्रोग्राम, ये नियमित ये भी श्रोता हैं और लिख रहे हैं कि इन्हें अच्छा लग रहा है। इसके अलावा गौरी शंकर लिख रहे हैं, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, ये भी लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह सुनते रहिए और लिखते रहिए हमें। इसी तरह से एक और मेल है हमारे पास सुदर्शन मुखी का, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, और इनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से ये लिख रहे हैं। इन्हें भी कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत भी अच्छे लग रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और उमेश कुमार का ये दूसरा एक और मेल है, ये भी लिख रहे हैं कि अप्रैल फूल का गाना जो आपने सुनवाया था अभी, कि तो ये इन्हें बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने ध्यान से प्रोग्राम सुनते हैं, जानकारियाँ और गीत आपको पसंद आते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए और हमें लिखते रहिए, क्योंकि यकीन मानिए आपके लिखने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, हम प्रोग्राम को और अच्छा और बेहतर बना पाते हैं। तो अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घर की साफ़ सफाई की, जो कि आजकल कई घरों में शुरू हो गई होगी या होने वाली होगी। तो साफ़ सफाई ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस बार करें स्मार्ट और सेफ सफाई। सबसे पहला और ज़रूरी टिप ये है कि अकेले पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी ना उठाएं, खासकर से ये बात हम महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं, जो कि समझती हैं कि सारा काम बस उन्हीं की जिम्मेदारी है और वो शुरू हो जाती हैं। घर के सभी सदस्यों को, बच्चों से लेकर बड़ों तक, छोटे छोटे काम बांट दीजिए, ताकि साफ सफाई का बोझ नहीं लगे, बल्कि एक मजेदार पारिवारिक गतिविधि की तरह आप उसे आनंद उसका उठा सकें। दूसरा पॉइंट है कि कमरे दर कमरे चलिए, एक साथ पूरा घर फैलाने से तनाव बढ़ता है, इसलिए इसको चरणबद्ध तरीके से कीजिए। आज किचन तो कल लिविंग रूम, और हाँ कबाड़ या पुराना सामान जो एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे या तो दान कर दीजिए या फिर बाहर का रास्ता दिखाइए। घर जितना हल्का होगा मन उतना ही साफ होगा, लेकिन ध्यान रखिए कि इस चक्कर में कोई ज़रूरी सामान ना फेंक जाए। तीसरा और सबसे अहम पहलू है कि आपकी सेहत, हार्श केमिकल या तेज एसिड को अवॉइड करें, फिर इसे इस्तेमाल करते वक्त हाथों में दस्ताने पहन लें, और धूल मिट्टी से बचने के लिए मुंह पर मास्क और सूती कपड़ा बांधना भी बिल्कुल ना भूलें। साफ सफाई के दौरान बीच बीच में पानी पीते रहें ताकि थकान ना हो। और चौथा और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस और झालरों की जाँच भी ज़रूर करवा लें, और पर्दे और जालों को हटाते समय तारों का खास ख्याल रखें। तो इस बार दिवाली पर सिर्फ घर के कोने कोने को ही नहीं, बल्कि अपने काम से, अपने काम के तरीकों को स्मार्ट बनाइए, और ज़्यादा थकिए नहीं बल्कि मुस्कुराइए।

0: धूल का फूल। अभी इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को है, तो मुझे यानी रेनू को दीजिए अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म है दिल तेरा दीवाना और आवाज़ है रफ़ी और लता की। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: खुद

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाद क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय

में पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों

0: opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, and opposition MPs from other parties staged a sit-in on Parliament Street. India's women's cricket captain Harmanpreet Kaur has stepped down as captain across all three formats. The 37-year-old announced her decision after a BCCI review meeting in Guwahati. Harmanpreet led India to its maiden ODI World Cup title last year and also guided the team to gold at the Asian Games. She captained India in 5 tests, 51 ODIs and 155 T20 internationals, having led the T20 side since 2016 and taken charge of the ODI team in 2022. And with that, we end this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका मनपसंद सेगमेंट एक ही फिल्म से। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और आज की जो हमारी फिल्म है वो 1982 में बनी हिंदी भाषा फिल्म खुद्दार है, जिसका निर्देशन रवि टंडन ने किया और मुख्य भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी, विनोद मेहरा, संजीव कुमार, प्रेम चोपड़ा, महमूद बिंदिया गोस्वामी और तनुजा है। अगर इतने सारे मुख्य कलाकार हैं तो यानी कहानी भी दिलचस्प रही होगी। तो श्रोताओ, आज हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में और इससे जुड़े कुछ किस्से आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस फिल्म से एक गीत से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुरों में।

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो संजीव कुमार हैं हरी श्रीवास्तव की कलाकार के रूप में, अमिताभ बच्चन है गोविंद श्रीवास्तव, विनोद मेहरा है राजेश श्रीवास्तव, तनुजा है सीमा श्रीवास्तव, परवीन बॉबी है मैरी, बिंदिया गोस्वामी मंजू वर्मा, प्रेम चोपड़ा बंसी के रूप में, महमूद जग्गन के रूप में, और एके हंगल रहीम चाचा, रमेश देव, रामनाथन, पिंचू कपूर, श्री वर्मा जी के किरदार में। और अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस फिल्म में गोविंद यानी अमिताभ बच्चन और राजेश दो भाई हैं। वे अपने बड़े सौतेले भाई हरी यानी संजीव कुमार के साथ काफ़ी खुश रहते हैं। हरी अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने दो महीने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। उसकी नई नई शादी हुई होती है और उनकी पत्नी सीमा को अपने पति के अपने सौतेले भाइयों की इतनी चिंता करने से बहुत थोड़ी जलन होने लग गई थी। वो अपने पति के जाने के बाद उन दोनों को घर छोड़कर मुंबई जाने के लिए मजबूर कर देती है।

कुछ दिनों तक सड़कों में भटकने के बाद उन दो भाइयों को रहने की जगह मिल जाती है। वे दोनों रहीम के घर रुकते हैं, जिसका एक बेटा अनवर और एक बेटी फरीदा है। गोविंद अपने भाई की पढ़ाई का जिम्मा अपने सर ले लेता है और टैक्सी ड्राइवर बन जाता है। वहीं राजेश में लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एक अमीर खानदान की लड़की मंजू से शादी कर लेता है और उसके ही घर पर रहने लगता है। वर्मा का भाई बंसी राजेश को ड्रग तस्करी के काम से वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी के गाड़ी से भेज देता है। उसके साथ अनवर भी इसी काम में लगे रहते हैं। एक दिन पुलिस को इसकी भनक लग जाती है और मुठभेड़ में अनवर को बुरी तरह से चोट लग जाती है।

श्रोताओं, जब अनवर को बुरी तरह चोट लग जाती है तो बंसी के गुंडे अनवर का प्रहार करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान रहीम को गोली लग जाती है। इस घटना के बाद राजेश को एहसास होता है कि किस तरह बंसी उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बंसी तब तक सेठ वर्मा की हत्या कर चुका होता है और उस हत्या के आरोप में राजेश को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को उस जगह पर गोविंद मिलता है और उसी पर हत्या का आरोप लग जाता है। उसे अदालत में लाया जाता है जहां हरी जज रहता है। जब हरी के सामने गोविंद की सच्चाई आती है तो वह जज ना बनकर उसकी तरफ से वकील बन जाता है। वो सारी सच्चाई सामने ले आता है कि बंसी ही असल हत्यारा है। बंसी अदालत से भागने लगता है, गोविंद उसे अपने टैक्सी के सहारे पकड़ लेता है। वे तीनों भाई वापस से एक हो जाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी कुछ इस तरह से इस फिल्म की कहानी, और आगे भी हम इस फिल्म के कुल दिलचस्प किस्सों के बारे में बात करते हैं। फिलहाल सुनते हैं ये अगला गीत जो कि बहुत ही लोकप्रिय, वैसे तो इस फिल्म के सभी गीत काफ़ी फेमस हैं, बट उन फेमस गीतों में से एक है ये अगला गीत।

श्रोताओं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी जो आज की कार्यक्रम है वो आज की जो फिल्म है वो है 1982 की फिल्म खुद्दार। और अगर इस फिल्म से जुड़े कुल दिलचस्प किस्से के बारे में बात करें तो ये फिल्म अमिताभ बच्चन की उस समय रिलीज़ हुई थी जब बेंगलुरु में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी और पूरा देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा था। निर्माता अनवर अली असमंजस में थे कि फिल्म रिलीज करे या नहीं। तब हरिवंश राय बच्चन ने सलाह दी थी कि शो मस्ट गो ऑन, और अमिताभ भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। तो वैसे तो उनकी सलाह बहुत ही अच्छी थी, शो मस्ट गो ऑन, हमारा शो भी चलता रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अगला जो हमारा दिलचस्प किस्सा है वो ये है कि निर्माता अनवर अली, जो कि हम सब जानते हैं, या जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अनवर अली महमूद के छोटे भाई हैं और अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत साथ हिंदुस्तानी से एक साथ की थी। अनवर अली जब आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तब अमिताभ ने इस फिल्म के लिए अपनी कोई एडवांस फीस नहीं दी और इस फिल्म के, और ये भी है कि इस फिल्म के जो लेखक थे वो कादर खान थे। ये उनकी इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी, पटकथा और संवाद यानी डायलॉग्स तीनों उन्होंने अकेले ही लिखे थे।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, तो चलिए उन संदेशों को हम अपने इस कार्यक्रम में सुनते हैं। जो हमारा पहला संदेश है वो है नितेश देवांगन का, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन या हमें लिख कर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह में लिखकर भेज रहे हैं पद्मा टॉकीज नीपा नगर से। अगला जो संदेश है वो सदानंद मंदूरकर का है और इनके साथ हैं सुशीला देवी का, कुमार गौरव मंदूरकर, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं डाबकी रोड अकोला से। और जो अगला संदेश है, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, जालंधर से, दिग्दर्शन गौर और कविता गौर हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं। और जो अगला संदेश है वो है मसरूर हसन का और इनके साथ हैं शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। अगला जो संदेश है

वो है हीरामणि वर्मा का। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटापारा से। कमलकांत गुप्ता हमें लिखकर भेज रहे हैं पिपरिया से। श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता, आर कुमार, वंडिंग खेड़ा पंजाब से। मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, हरजिंदर शिंदा हमें लिखकर भेज रहे हैं। इनके साथ है जसवीर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, गांव नथाना पंजाब से। धर्मेंद्र चीपा हमें लिखकर भेज रहे हैं। और जो साथ ही अगला संदेश है वो है फारूक अली खान का। भूषण खेरा हमें लिखकर भेज रहे हैं। पूनम गजनेजा, जलालाबाद वेस्ट से। सुरेश गजनेजा और निमित दिशानी। जो अगला संदेश है वो है अनिल मोहन का। इनके साथ ही उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी, ढांडा से। श्रोता, अगला संदेश है राजकुमार डूडी का, गांव फरांसी, जिला हिसार से। संजय ढींगिया में संदेश भेज रहे हैं और इनके साथ है नमन ढींगिया, पार ढींगिया। अगला संदेश है राधे श्याम देवांगन का। इनके साथ हैं जगदीश देवांगन, चंपा देवांगन, छत्तीसगढ़ भंवरपुर से। अजीत भावसर हमें लिखकर भेज रहे हैं। इनके साथ है प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार, सनी भावसार, राकेश कुमार भावसार, गुजरात से। उषा मोहन और इनके साथ हैं अनिल मोहन, पीटीआई संसद मार्ग से। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमें लिखकर भेज रहे हैं। शांति नगर, सोनीपत से। और जो अगला संदेश है मेहर अरोड़ा का है और इनके साथ है ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला, श्रीगंगानगर, राजस्थान से। और पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से। और इनके साथ है मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान टाइडे, आशीष और अन्य सदस्य के लोग। तो श्रोताओं, चलिए, समय की थोड़ी कमी है और इस कमी को देखते हुए हम सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का और इस फिल्म का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और इस कार्यक्रम में मुझे यानी दीक्षा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र

0: द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस अब से कुछ देर में यानी 1:40 पर आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव। पहला चुनावी खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी समुद्री ताकत को होर वधाने लिए एक मजबूत ते एकीकृत इकोसिस्टम की लोड़ है। देहाती विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार ते आजीविका मिशन देहाती एक्ट 2025 तहत मंजूर शुदा कामों की सूची नोटिफाई की है। विरोधी पार्टियां ने वोटर सूचियों की विशेष सोध SIR प्रक्रिया में बेनियमिया और मुख चोण कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली के संसद मार्ग तो चोण कमिश्नर के दफ्तर तक विरोध मार्च कढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से देश में अराजकता का माहौल बनाने की योजनाबद्ध कोशिश करने का इल्जाम लाया। भारत की महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉरमेट्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी समुद्री ताकत को होर वधाने और देश की रक्षा समर्था को मजबूत करने एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की लोड़ है। श्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विखे फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 की शुरुआत की। उन्होंने फ्लीट स्पोर्ट शिप 5 की नींह रखी और अपग्रेड किए स्लिपवे 4 और 300 टन समर्था वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन किया। इकट्ठ को संबोधन करदे श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 की शुरुआत फ्लीट स्पोर्ट शिप 5 का नींह पत्थर HSL विखे उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत दीआं समुद्री समर्थावां नूं मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण कदम ने। उन्होंने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 भारतीय समुद्री फौज की संचालन प्रभावशीलता वधाएगा। उन्होंने अगे कहा कि HSL विखे नवा स्लिपवे और गोलियत क्रेन वड्डे जहाज निर्माण प्रोजैक्टां नूं पूरा करने लई शिपयार्ड की समर्था च वाधा करनगे। उन्होंने कहा कि समुद्री फौज ने मानवतावादी सहायता आफत राहत समुद्री डाकू विरोधियां कार्यां अते समुद्री सुरक्षा विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 8 दहाकियां तो वध समय तो भारत दीआं समुद्री ते रक्षा जरूरतां नूं पूरा करने विच अहम भूमिका निभाई है।
6: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
5: देहाती विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार ते आजीविका मिशन ग्रामीण देहाती विकास मंत्रालय एक्ट 2025 तहत मंजूरशुदा कामों की सूची नोटिफाई की है। नवे पेंडू कार्ज ढांचे च 375 मंजूरशुदा कामों का प्रबंध है। यह नवी सूची पिछले ढांचे तहत 266 कामों तो 41% वाधा दर्शाती है। कामों को 4 मुख थम्मां के आधार पर पुनर्गठित किया गया। इन्हें पानी सुरक्षा, बुनियादी पेंडू ढांचा, आजीविका ढांचा और मौसमी घटनावां ते आफतां की तैयारी लई विशेष काम। हरेक काम ग्राम सभा द्वारा प्रवानित एक विकसित ग्राम पंचायत योजना तहत जमीनी विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया द्वारा शुरू किया जाएगा। अज तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल दीआं विधानसभा सीटां ते असाम की एक लोकसभा सीट की जिमनी चोणां लई वोटां पै रहीआं ने। तमिलनाडु विच मंदुरतकम और धारापुरम विधानसभा सीटां, पुडुचेरी विच थट्टन चावड़ी और पश्चिम बंगाल विच रेजीनगर ते नंदीग्राम सीटां लई वोटिंग हो रही है। असाम विच नगांव लोकसभा सीट लई भी वोटिंग जारी है। वोटां की गिणती शुक्रवार नूं होएगी। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर अज तो घाना, कोट डिआइवर और इथोपिया के 5 दिन दौरे ते होणगे। दौरे दौरान डॉ जयशंकर अपने हमरुतबा नाल दवली गलबात करनगे ते दवले संबंधां दी समीक्षा करन लई तीन देशों के चोटी के नेतावान मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉ जयशंकर का

0: अफरीका नाल अपनी भाईवाली नूं मजबूत करन लई भारत दी वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुण रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @ARRNews जलंधर। विरोधी पार्टियां ने वोटर सूचियां दी विशेष सोध SIR प्रक्रिया विच बेनेमियां ते मुख चोण कमिश्नर ज्ञानेश कुमार नूं हटाउण दी मांग करदिआं दिल्ली दे संसद मार्ग तों चोण कमिश्न दे दफ्तर तक विरोध मार्च कढ़िआ। हालांकि उन्हां नूं आकाशवाणी भवन दे नेड़े रोक लिया गया। कांग्रेस प्रधान ते राज्यसभा विच विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोक सभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ते होर पार्टियां दे विरोधी संसद मैंबरां ने संसद मार्ग ते धरना दित्ता। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ते देश विच अराजकता दा माहौल बनाउण दी योजनाबद्ध कोशिश करन दा इल्जाम लाया है। नवी दिल्ली विच मीडिया नाल गल्लबात करदिआं बीजेपी दे राष्ट्रीय बुलारे संबित पात्रा ने कहा कि इस लई विरोधी पार्टियां योजनाबद्ध ढंग नाल देश दीआं संवैधानिक संस्थावां विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां कर रहीआं ने। श्री पात्रा ने अगे कहा कि पिछले कई हफ्तियां ते महीनियां तों विरोधी धिर अराजकता दा माहौल बनाउण लई चोण कमिशन नूं निशाना बना रही है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी 50 करोड़ टैली कंसल्टेशन नूं पार कर गई है। ए डिजिटल तकनालोजी राही देश भर दे लोकां नूं किफायती पहुंचयोग ते बेहतर सेहत संभाल सेवावां प्रदान करन दे सरकार दे यत्नां विच इक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने कहा कि हुण तक सारे 36 राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां विच 50 करोड़ तों वध टैली कंसल्टेशन कीतीआं गईआं ने। मंत्रालय अनुसार यह प्राप्ति सेहत संभाल विच टेलीमेडिकल की वधदी भूमिका नूं दर्शाउंदी है। ई संजीवनी देश की डिजिटल सेहत प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इस नूं मुढ़ली सेहत संभाल लई दुनिया की सब तों वड्डी टेलीमेडिकल प्रणाली मन्निया जांदा है। इस सेवा राहीं लोक हस्पताल जां सेहत केंद्र जाए बिना अपने आले दुआले दे डाक्टर नाल सलाह मशवरा कर सकदे ने। भारत की महिला क्रिकेट टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉरमैट्स विच कप्तानी छड्डण दा ऐलान कीता है। 37 साल इस खिडारन ने गुवाहाटी विच BCCI की समीक्षा मीटिंग तों बाद अपने फैसले दा ऐलान कीता। हरमनप्रीत ने पिछले साल भारत नूं अपना पहला एक रोजा विश्व कप खिताब अते एशियन खेडां विच टीम नूं सोने दा तमगा दवाया है। उसने 5 टेस्ट मैचा 51 एक रोजा ते 155 2020 मैचा विच भारत की कप्तानी की। हरमनप्रीत कौर सारे फॉरमेट्स विच एक खिडारी वजों भारत की नुमाइंदगी करती रहेगी। पुरुष क्रिकेट विच भारत अते वेस्टइंडीज विचकार 5 मैचा की 2020 लड़ी का पहला मैच अज लखनऊ विच खेडा जाएगा। यह मैच भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम विच शामी 7 बजे शुरू होगा। लड़ी के अगले 4 मैच 9, 11, 14 ते 17 अक्तूबर नूं रांची, इंदौर, हैदराबाद ते बंगलुरु च खेडे जाणगे। जापान एशियाई खेडां विच सोन तमगा जित्तण वाली भारतीय हाकी टीम दे मैंबरां दा अज सवेरे अमृतसर हवाई अड्डे ते पहुंचण ते शानदार स्वागत कीता गया। वड्डी गिणती च लोक, खेड प्रेमी, पंजाब हाकी एसोसीएशन दे अधिकारी ते खिडारियां ते परिवारक मैंबर उन्हां नूं वधाई देण लई पहुंचे। टीम दे कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सोने दा तमगा जित्तण ते खुशी ते माण प्रगट कीता। उन्हां कहा कि ओलंपिक विच सिद्धा स्थान प्राप्त करना टीम लई बहुत फायदेमंद होएगा। इस नाल खिडारियां नूं अपनियां कमियां ते काम करन अते ओलंपिक लई बेहतर तैयारी करन लई काफी समां मिलेगा। उन्हां ने भारतीय महिला हाकी टीम नूं एशियाई खेडां विच सोने दा तमगा जित्तण ते वधाई भी दित्ती। अमृतसर पहुंचण वाले खिडारियां विच जुगराज सिंह, हारदिक सिंह ते मनप्रीत सिंह शामिल ने। भारतीय टीम ने फाइनल विच मलेशिया नूं 5-1 नाल हरा के सोने दा तमगा जित्तिआ सी अते 2028 लॉस एंजलस ओलंपिक लई सिद्धे तौर ते क्वालीफाई भी कर लिया। कोलकाता च फीफा अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना फुटबाल मैच विच अज भारत दा उरुग्वे नाल मुकाबला होएगा। भारत ने पहला पनामा नाल 1-1 गोल नाल ड्रा खेडिआ सी ते शनिचरवार नूं ब्राजील तों 4-0 नाल हार गया सी। नाइजीरिया च बेनिन सिटी तों लागोस जा रहे एक फौजी जहाज हादसाग्रस्त हो गया। इस हादसे विच सवार सारे 32 लोग मारे गए, जिन्हां विच 25 मुसाफर ते 7 चालक दल दे मैंबर शामिल सन। राष्ट्रपति बोला टिनिबू ने हादसे की पुष्टि की ते नाइजीरियाई हवाई फौज नूं हादसे दे कारणां दा तुरंत पता लाउण दे निर्देश दित्ते ने।

0: अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नूं अपनी समुद्री ताकत नूं होर वधाउण लई एक मजबूत ते एकीकृत इको सिस्टम की लोड़ है। देहाती विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार ते आजीविका मिशन देहाती एक्ट 2025 तहत मंजूर शुदा कामों की सूची नोटिफाई की है। विरोधी पार्टियां ने वोटर सूचियां की विशेष सोध SIR प्रक्रिया विच बेनियमिया ते मुख चोण कमिश्नर ज्ञानेश कुमार नूं हटाउण दी मंग करदिआं दिल्ली दे संसद मार्ग तों चोण कमिश्नर दे दफ्तर तक विरोध मार्च कढ़िआ है। भारत की महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छड़न का ऐलान किया है। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशविरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो भारत की डिजिटल हिफ्जान सेहत पहल में एक अहम हसूलियाबी है। और आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को एक मजबूत और मरबूत समंदरी इको निजाम की जरूरत है, ताकि वो अपनी समंदर की ताकत में इजाफा कर सके और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बना सके। वजीर दिफा ने आज बेड़े के पहले इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी और स्लिपवे 4 नीज 300 टन की एक कोलायत ट्रेन की भी जदीदकारी के काम का इफ्तिताह किया। ये तकरीब विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड में मुनक्किद की गई। जनाब सिंह ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया जाना, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखा जाना और HSL में बुनियादी ढांचे की तश्दीद के काम का इफ्तिताह भारत की समंदर से मुतालिक सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने की जानिब अहम इकदाम हैं। उन्होंने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1, जिसका नाम सूर्या है, इससे भारतीय बहरिया की रसाई, पायदारी और मुअस्सर कामकाज को तकवियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नए स्लिप हुए और गोलायत ट्रेन से शिपयार्ड्स की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा कि यहां बड़े जहाजों की तामीर के प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे।
2: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा सीट पर आज जिमनी इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में मधुरांतकम और तारापुरम, पुदुचेरी में तट्टान सावडी और मगरबी बंगाल में रेची नगर और नंदीग्राम असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा असम की नागांव लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। भारत की कौमी टेलीमेडिसिन खिदमत ई संजीवनी पर टेली सलाह मशविरों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो मुल्क भर में क्वालिटी हिफ्जान सेहत को मजीद काबिल रसाई, कम खर्च और सभी शहरियों के लिए मुसावियाना तौर पर फराहम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संग मील है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी 36 रियासतों और मरकज के जर इंतजाम इलाकों में मजमूई तौर पर 50 करोड़ से ज्यादा टेली सलाह मशविरे रिकॉर्ड किए गए। सेहत और खानदानी बहबूद की भारत ने बताया कि इस हुसूलियाबी से मुल्क के मौजूदा हिफ्जान सेहत निजाम की तकमील में टेली मेडिसिन के बढ़ते हुए रोल और खास तौर पर देही, दूरदराज और कम सहूलियात वाले इलाकों में रहने वाले शहरियों को दरपेश फासले, जुग्राफियाई और रसाई में दरपेश रुकावटों पर काबू पाने में कामयाबी की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो इस शोबे में खिदमत और हमदर्दी के जज्बे से काम करें। आज हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर के पहले जलसा तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जिससे इदारे के वक़ार में इजाफा हो और आइंदा नस्लें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तहरीक हासिल करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को अक्सर खुदा का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है और इसलिए खिदमत खल्क उनका अव्वलीन मकसद होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि डॉक्टरों का हमदर्दी से पुर रवैया मरीजों की काफी मदद कर सकता है।
3: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
1: नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत एक सुनहरी डोर है जो सभी भारतीय जबानों को बाहम मरबूत करती है। आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री कौमी संस्कृत यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के दूसरे सालाना जलसे से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि हर भारतीय जबान एक अजीम जबान है और इन जबानों से मुल्क की सकाफत में गिना कदर तआवुन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीगर जबानों के अलावा संस्कृत को फरोग देने के लिए भी बहुत से इकदामात किए हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से भारत के इल्मी निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इस विजन को मजीद तख़फ़ियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि वो भारत के इस इल्मी निज़ाम को अपने प्रोग्रामों में शामिल करें। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत का मकाम साइंस, अदब और फलसफे की दुनिया में शानदार हैसियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है कि अपोजिशन पार्टियां बिलखसूस कांग्रेस मुल्क में लाकानूनियत का माहौल पैदा करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से इकदाम कर रही हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ मनसूबाबंद तरीके से इहानत आमेज बयान दे रही हैं।
4: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने आज कहा है कि भारत ने पानी के तहफ्फुज के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी कोशिशों में से एक हैं। इनसे जनभागीदारी और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाखियत को मजबूत बनाने की अक्कासी होती है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक इख्तरा की एक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत वाली रियासतों में मुख्तलिफ देही तरक्याती इकदाम किए गए हैं। अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक एक एहतजाजी मार्च किया जो भारत के इंतखाबी कमीशन का सदर दफ्तर है। ये मार्च खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के अमल में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बरतरफ करने के मुतालबे के तहत किया गया। अलबत्त जब ये मुजाहरीन आकाशवाणी के करीब इंतखाबी कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे तो हिफाजती अमले ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर धरना दिया। यमन में आज लड़ाई में उस वक्त शिद्दत आ गई जब सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फोर्सेस ने हूसियों के खिलाफ नई कार्रवाइयां अंजाम दीं। सऊदी इत्तेहाद फोर्सेस के मुताबिक उसकी बहरी अफवाज ने जद्दा में एक कार्रवाई करते हुए असलहा के जखायर, धमाका खेज मवाद से लैस कश्तियों और बहरी बारूदी सुरंगों को जखीरा करने वाली तनसीबात को तबाह कर दिया। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया।

0: है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो भारत की डिजिटल हिफ्जाने सेहत पहल में एक अहम हसूलियाबी है। आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh launches Fleet Support Ship 1 and lays keel for Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard in Visakhapatnam. Polling underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. E-Sanjeevani crosses 50 crore teleconsultations, marking a milestone in India's digital healthcare initiative. World Bank raises India's GDP growth projection by 0.5% to 7.1% for current fiscal. And India to take on West Indies in first T20 match at Lucknow this evening. Defence Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defence capabilities. The Defence Minister today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said the launch of Fleet Support Ship 1, keel laying of Fleet Support Ship 5 and inauguration of upgraded infrastructure at HSL mark important steps in strengthening India's maritime capabilities. He said Fleet Support Ship 1 named Surya will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects.
2: वर्ष 2025 में
3: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गॉट मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस अकॉर्डेड इन 2025 रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन। HSL हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स। इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डिकेड विद द कंट्री मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांस सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म डोमेस्टिकली। द नेवी शिपयार्ड्स DRDO एकेडमिया इंडस्ट्री MSMEs and startup needs to work together as an integrated team to build a strong national maritime ecosystem.
2: Aur tezi se execute karega.
1: Mr. Singh said Hindustan Shipyard Limited has played an important role in meeting India's maritime and defence requirements for more than 8 decades. He said the shipyard's Mini Ratna Category 1 status, accorded in 2025, reflects its transformation and improved financial position. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madurantakam and Tharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattan Chavadi in Puducherry and Rajinagaran Nondigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nagaon in Assam. Counting of votes will be taken up on Friday. The 8 candidates fielded by the BJP for the upcoming Rajya Sabha elections from Uttar Pradesh filed their nomination papers at the Vidhan Bhavan in Lucknow. UP Chief Minister Yogi Adityanath, BJP State President Pankaj Chaudhary, Deputy CMs Keshav Prasad Maurya and alongside senior party leaders were also present during the filing of the nomination. MLC candidates also filed their nominations. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the 10 Rajya Sabha seats from the state will be held on the 16th of this month. Opposition party.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिपबिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रूपये से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों धारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और धारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु पेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग दो गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टैचू आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश की सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
7: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपने नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

0: के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि होती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हूतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हूतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। श्रोताओं, कुछ कलाकार पर्दे पर आते हैं और किरदार निभाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। इनका चेहरा याद रह जाता है, इनकी आवाज़ याद रह जाती है और इनका अंदाज याद रह जाता है, और सालों बाद भी इनका नाम लिया जाए तो आंखों के सामने इनकी फिल्में घूमने लगती हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक अभिनेता की है जिसकी ज़िंदगी ने सिनेमा से लेकर राजनीति तक का हर क्षेत्र में अपनी एक नई मिसाल पेश की है।

यहाँ दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड के स्टाइलिश आइकॉन, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी विनोद खन्ना जी की। 6 अक्टूबर 1946 यानी आज ही के दिन पेशावर में इनका जन्म हुआ था। इनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण, आध्यात्मिक खोज और जनसेवा की भी है। इनकी लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से हम आपको सुनाएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म कुर्बानी का ये शानदार सा गीत।

दोस्तों आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं विनोद खन्ना जी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों विनोद खन्ना जी के जो पिता थे किशन चंद खन्ना, कपड़ा डाई और केमिकल के बिजनेस से जुड़े थे, और माँ कमला खन्ना एक हाउसवाइफ थी। परिवार में तीन बहन और एक भाई भी थे। विभाजन के बाद परिवार मुंबई आ गया था और इन्होंने सेंट मेरी स्कूल और सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी शिक्षा ली और फिर नासिक में देवला ली के बोर्डिंग स्कूल में भी रहे। बोर्डिंग स्कूल में फिल्म 16 साल और मुगले आजम देखकर मन में आर्टिस्ट बनने की तमन्ना जाग उठी। इसके अलावा इन्हें क्रिकेट खेलने का भी शौक था, पर कॉलेज के दिनों में थिएटर ग्रुप से जुड़ने के बाद इन्होंने एक्टर बनने की ठान ली। महज 22 साल की उम्र में विनोद खन्ना को फिल्म मन का मीत में काम करने का मौका मिला। दिलचस्प बात ये थी कि शुरुआत में ही इन्होंने नेगेटिव भूमिका निभाई। इसके बाद भी इन्होंने पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में भी नेगेटिव और सपोर्टिंग किरदार निभाए। हालांकि ये कभी एक ही इमेज में बंधकर नहीं रहे, कभी खलनायक, कभी पुलिस अधिकारी, तो कभी गंभीर नायक, कभी रोमांटिक किरदार जो पूरी कहानी में अपनी अलग जगह बना लेता था। दोस्तों अब कहानी पहुंचती है उस दौर में जब विनोद खन्ना का नाम बड़े बजट की फिल्मों में बड़े कलाकारों और बड़े संगीत से जुड़ने लगा था। पर अभी सुनिए इनकी फिल्म मेरे अपने का ये सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज विनोद खन्ना जी की। अब आते हैं विनोद खन्ना के करियर के उस दौर पर जब वो सिर्फ अभिनेता नहीं रहे थे, वो एक बड़े फिल्म स्टार बन चुके थे। 70 का दशक हिंदी सिनेमा और विनोद खन्ना के लिए महत्वपूर्ण दौर था। स्टोरी और म्यूजिक में बदलाव हो रहा था और दूसरी तरफ मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर भी चल रहा था। विनोद खन्ना ने इस दौर में हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, इनकार, कच्चे धागे जैसी फिल्मों से अपने स्टारडम को मजबूत किया। वहीं 80 के शुरुआत में इन्होंने कुर्बानी जैसी शानदार फिल्म की। लेकिन दोस्तों, किसी भी कलाकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां सफलता के बावजूद मन किसी और सवाल का जवाब तलाशने लगता है। विनोद खन्ना के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया और यही मोड़ विनोद खन्ना को सबसे अलग बनाता है। इस सवाल से पर्दा हटाएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म लहू के दो रंग से ये गीत।

दोस्तों आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जो आज के कलाकार हैं वो हैं विनोद खन्ना और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपके पास नाम है, शोहरत है, फिल्में हैं, दर्शकों का प्यार है और करियर लगातार ऊँचाइयों पर है, लेकिन उसी समय आपका मन आपसे एक दूसरा ही सवाल पूछने लगे। जी हाँ दोस्तों, विनोद खन्ना के जीवन में आध्यात्मिकता का आकर्षण इसी दौर में बढ़ा। वो ओशो से जुड़े और दिसंबर 1975 में उनके शिष्य बने। बाद में इन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई और अमेरिका में समय बिताया। यहाँ इन्होंने बागवानी, सफाई और रोज़मर्रा के दूसरे काम किए। एक बड़े फिल्म स्टार के लिए ये जीवन बिल्कुल अलग था। फिल्मी दुनिया से इनका ये ब्रेक लगभग 5 साल तक रहा, लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती। कुछ समय बाद इन्होंने फिल्मों में वापसी का फैसला किया। 80 के दशक के मिडिल में इनका फिल्मी सफ़र फिर आगे बढ़ा। वापसी के बाद इन्होंने इंसाफ, दयावान और चांदनी जैसी शानदार फिल्मों में अपनी चमक बिखेरी। इतना ही नहीं, फिल्म हिमालय पुत्र में इन्होंने प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभाई और अपने बेटे अक्षय खन्ना को लॉन्च किया। और इसी बीच इनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, अभिनेता से राजनेता बनने का। पर वक्त हो गया है इनकी फिल्म दयावान का ये एवरग्रीन सॉन्ग सुनने का।

दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों विनोद खन्ना की कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू इनका सार्वजनिक जीवन भी है। 1997 में ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अगले साल पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। ये इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव था जिस व्यक्ति ने दर्शकों तक कैमरे के सामने किरदार निभाए थे वो अब वास्तविक जीवन में लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निभा रहा था। 2002 में इन्हें केंद्र सरकार में संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद इन्होंने विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। 2014 में वो एक बार फिर गुरदासपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। वाकई विनोद खन्ना जी की रियल स्टोरी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं लगती। वहीं अगर विनोद खन्ना की निजी जिंदगी की बात करें तो इनके दो बेटे हैं राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना, जिनको जो खुद भी मूवीज़ में काम करते हैं एज ए एक्टर, वो हमारे मूवीज़ में हमें दिखते हैं। और वहीं अगर हम अवार्ड्स की लिस्ट बात करें तो विनोद खन्ना जी की फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2018 में मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में और हमारे कुछ श्रोताओं के मेल आ चुके हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। ये हैं पश्चिम सिंहभूम, झारखंड से शिव गोपा, प्रेम गोपा, कपिल, शिवान, संगीता, लिपि और दीपाली गोपा। ये हैं सैयद मंसूर।

तो साइना हसन नाजिया इब्राहिम सहारनपुर से हैं ये, और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया हैं हमारे साथ। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति पत्र से हैं। छत्तीसगढ़ भंवरपुर से राधेश्याम देवगन चंपा हैं साथ में जुड़ी हुई हमारे साथ। ये चिरमरी कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर नारायण प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये हैं गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जयसवीर सीता गीता भी हमारे साथ हैं और विनोद खन्ना जी पर केंद्रित। जी हाँ, हम विनोद खन्ना जी पर केंद्रित आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़ और कविता गौड़ हैं ये हमारे साथ। बिहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना हमारे साथ हैं। तो चलिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और आपको सुनाते हैं जुर्म फिल्म से ये गीत।

दोस्तों, कुछ कलाकार चले जाते हैं मगर उनका काम उनके साथ नहीं जाता। उनकी फिल्में रहती हैं, उनके किरदार रहते हैं, उनकी आवाज़ रहती है और दर्शकों की यादों में उनका चेहरा बना रहता है। विनोद खन्ना जी का संपूर्ण जीवन अलग अलग रंगों से बिखरा हुआ था, लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंतिम अध्याय था। 70 साल की उम्र में 27 अप्रैल 2017 को इनका निधन कैंसर की वजह से हुआ। इनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सपने देखो, मेहनत करो, शांति खोजो और समाज की सेवा करो। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को यहीं समेटते हैं। अगले शो में आपके साथ ऐसे ही किसी महान कलाकार के जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर करेंगे। फिलहाल अपने दोस्त राखी बैनर्जी को दीजिए अनुमति, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अगर आप वक्त मिलाना चाहें तो हमारी स्टूडियो की घड़ी से वक्त मिला सकते हैं। 3:25 हो चुके हैं और ये वक्त है प्रोग्राम मैटनी मेलोडीज का। तो प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा नक्श लालपुरी ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

जी, आप सुनते हैं दोस्तों आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में गीत, जैसे लिखा शिवान रिजवी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म का नाम था हंसते जख्म। और इस गीत से पहले एक और गीत हमने आपको सुनवाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म थी सट्टा बाजार। लीजिए अब सुनते हैं ये रात फिर ना आएगी फिल्म का गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने खुशबू फिल्म का गीत सुना, जिसे लिखा था गुलजार ने और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रखे हैं, आइए सुनते हैं प्रोग्राम उर्दू में।

0: उर्दू मजलिस के सभी सामेईन की खिदमत में नसरीन बेगम
1: और सरफराज आलम का पुरखलूस
0: आदाब। पेश है प्रोग्राम उर्दू दुनिया के शबो रोज।
1: समीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम उर्दू दुनिया की अदबी सरगर्मियों पर मुश्तमिल होता है।
0: जी, जिसमें सेमिनार, मुजाकरे, रस्मी इजरा और शेरी नशिस्तों वगैरह का जिक्र होता है।
1: नसरीन, उर्दू दुनिया के शबो रोज के हवाले से बात करने से कबल आइए स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, जो गुजरात के नर्मदा खित्ते में वाकई है।
0: जी सरफराज, स्टेचू ऑफ यूनिटी आजहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में तामीर किया गया है। ये मुजस्मा दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मुजस्मा है। इसका इफ्तिताह 31 अक्टूबर सन 2018 में किया गया था।
1: बिल्कुल नसीन, और ये सिर्फ मुजस्मा नहीं है बल्कि एक तारीखी शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करता है। इसने सियाहत और इलाकाई तरक्की के नए बाब का भी आगाज किया है और इसने पूरे खित्ते को तरक्की के नए मौके फराहम किए हैं।
0: और सरफराज, इस सियाहती मरकज की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सन 2024 में यहाँ तकरीबन 58 लाख से ज्यादा सैयाह पहुँचे। इससे कबल 7 बरसों में तकरीबन 2,75,00,000 से ज्यादा अफराद इस मकाम का दौरा कर चुके थे। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि सियाहती मरकज किस तरह लोगों को अपनी जानी मुतवज्जे कर रहा है।
1: बिल्कुल नसीन, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी आज न सिर्फ इत्तेहाद और कौमी यकजहती की अलामत है बल्कि ये पूरे खित्ते में सियाहत, रोजगार और इक्तसादी तरक्की की बुनियाद भी मुस्तहकम कर रहा है।
0: जी, तो सरफराज अब चलते हैं खबरों की तरफ।
1: जी,
0: समीन, गुज़िश्ता दिनों नई दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 723वें सालाना उर्स के मौके पर एक सेमिनार बउनवान हज़रत महबूब इलाही हयात व ख़िदमात का इनेकाद किया गया। इस दौरान 3 किताबों का रस्म इजरा भी अमल में आया। इस मौके पर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने अपने सदारती खिताब में कहा कि हिंदुस्तान को ये शरफ व सआदत हासिल है कि वह चिश्तिया निज़ामिया सिलसिले की राजधानी है। उन्होंने कहा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को सूफ़ी उनकी वालिदा माजिदा ने बनाया था। जब फाक़िक़े वक्त उनकी वालिदा ने उन्हें बताया कि आज हम रब के मेहमान हैं, तो उसी वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सूफ़ी होने की बुनियाद रख दी गई थी। ग़ालिब अकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अकील अहमद ने अपने मकाले में कहा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने पीर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के मलफूज़ात कलमबंद किए। इस मौके पर कई दानिश्वरों ने मकाले पढ़े। नीज अफजल मंगलौरी ने मनकबत पेश की।
1: समीन, अब जिक्र करते हैं गालिब अकेडमी में मुनक़िद होने वाले माहाना अदबी नसरी नशिस्त की। गुज़िश्ता दिनों गालिब अकेडमी नई दिल्ली में माहाना अदबी नसरी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मोहतरमा सीमा कौशिक ने की। नशिस्त में मुख्तलिफ अदबी मौजूआत पर मजामीन, अफसाने और कहानियाँ पेश की गईं, जबकि मकसूद खां अली की किताब गुलशन कतआत की रस्म इजरा भी अमल में आई। डॉक्टर अकील अहमद ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उनवान से अपना मजमून पेश करते हुए कहा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अमीर खुसरो को देसी जबान इस्तेमाल करने के लिए कहा। हज़रत अमीर खुसरो ने न सिर्फ देसी जबान को अपनाया बल्कि देसी तहजीब को भी अपनी शायरी में बयान किया। उन्होंने अमीर खुसरो और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के अदबी व तहजीबी ताल्लुक़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौके पर डॉक्टर शहला अहमद ने तकसीम हिंद के असरात उर्दू अदब पर के उनवान से मजमून पेश किया, जिसमें तकसीम हिंद के उर्दू अदब पर मुरतब होने वाले असरात का जायजा लिया गया। मोहतरमा चश्मा फारूकी ने अपने मखसूस अंदाज में चश्मे ज़ात के उनवान से अफसाना पेश किया और जनाब सरवत उस्मानी ने तलफ़ के उनवान से अपने मकाले में सेमिनारों में पेश किए जाने वाले मकालों में तलफ़ की अहमियत और इससे मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। मोहतरमा सबीना सरताज ने हमने भी जिए वो पल के उनवान से कहानी पेश की, जबकि योगेंद्र सिंह ने अनमोल दुआएं के उनवान से अपनी कहानी पेश की। नशिस्त में तलबा समेत दीगर अदबी शख्सियात ने भी शिरकत की। समीन, आइए अब जगजीत सिंह की आवाज़ में एक गज़ल समाप्त करते हैं।

0: सामीन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। आइए अब बात करते हैं गालिब एकेडमी में मुनक़दा महफिल कलाम हज़रत तमीर खुसरो की। सामीन, गुज़िश्ता दिनों नई दिल्ली गालिब एकेडमी में वजारत सकाफत हुकूमत हिंद के तआवुन से उर्दू और हिंदी के पहले शायर हज़रत अमीर खुसरो पर महफिल कलाम अमीर खुसरो का इनेकाद किया गया, जिसमें दिल्ली के मशहूर फनकार जनाब अब्दुलरहमान और उनके साथियों ने हज़रत अमीर खुसरो की पहेलियाँ और गज़लें पेश की। इस मौके पर गालिब एकेडमी के सदर जनाब जी आर कंवल ने इजहार ख्याल पेश किया। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने भी हज़रत अमीर खुसरो के हिंदवी कलाम को हिंदी उर्दू का नक्श अव्वल बताया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में अदीब व तालिबे इल्म मौजूद रहे।
1: और आइए अब बात करते हैं एक तौसी खुतबे की। समीन, गुज़िश्ता दिनों जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू के ज़ेर एहतमाम असर हाजिर में उर्दू मीडिया का किरदार के मौजू पर तौसी खुतबे का इनेकाद किया गया। शायर, नकाद और सहाफ़ी डॉक्टर मुश्ताक सदफ ने खुतबा पेश किया, जबकि सदारत शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर कौसर मसरी ने की। डॉक्टर मुश्ताक सदफ ने कहा कि उर्दू मीडिया ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद उर्दू ज़बान और हिंदुस्तानी तहजीब के तहफ़ुज़ के साथ सकाफती बयानी को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। आम शहरियों और पसमानदा तबकात की आवाज़ इक्तदार तक पहुँचाने के साथ अवामी मसाइल को उजागर करने में भी उर्दू मीडिया का किरदार अहम है। उन्होंने कहा कि उर्दू सहाफत ने इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स को इख्तियार करके खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया है और ज़बान के महासिन व फिक्री रिवायात को डिजिटल दुनिया तक मुंतकिल किया है। प्रोफेसर कौसर मजहरी ने डॉक्टर मुश्ताक सदफ के खुतबे को मालूमाती और पुरमग़ज़ करार देते हुए कहा कि उर्दू मीडिया को अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों को पेश नज़र रखते हुए राय आमा की तशहील के लिए खुशगवार फ़जा और इजहार राय की आज़ादी को मुस्बत रंग देना चाहिए। प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर जावेद हसन ने मेहमान मुकर्रर डॉक्टर मुश्ताक सदफ का तारुफ पेश किया और निज़ामत भी की। इस मौके पर शोबे के रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा व तालिबात मौजूद थे। आइए अब चंदनदास की आवाज़ में समाअत करते हैं एक खूबसूरत गज़ल।

0: सामीन, अभी आप चंदन दास की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। आइए सामीन, अब जिक्र करते हैं एक और तौसीह खुतबे का। सामीन, गुज़िश्ता दिनों शोबाए उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम एक तौसीह खुतबे का इनेकाद अमल में आया। उनवान था तर्जुमे का मौजूदा मंजरनामा उर्दू और हिंदी के तनाजुर में। यह खुतबा मारूफ तर्जुमा निगार डॉक्टर खुर्शीद आलम ने पेश किया। उन्होंने कहा कि तर्जुमा सिर्फ ज़बान की मुंतकली नहीं बल्कि सकाफती इर्तबात का अमल है। प्रोफेसर कौसर मजहरी ने कहा कि डॉक्टर खुर्शीद आलम एक अहम तर्जुमा निगार हैं। तर्जुमे के सिलसिले में उनका अमली तजर्बा नहायत तवील और मोतबर है। इसमें कोई शक नहीं कि तर्जुमा भी किसी तौर पर तख्लीकी अमल से कम जागुसल अमल नहीं है। कन्वीनर डॉक्टर सैयद तनवीर हुसैन ने निजामत करते हुए मेहमान मुकर्रर का मुफसल तारुफ पेश किया। इस मौके पर शोबे के रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा और तालिबात मौजूद रहे।
1: आइए अब बात करते हैं डॉक्टर मंजर।

काजमी एवार्ड की। सामीन, इस साल का डॉक्टर मंजर काजमी एवार्ड बराए फिक्शन तख्लीक और फिक्शन तनकीद आलमी शोहरत याफ्ता फिक्शन तख्लीककार जनाब वहशी सईद और मारूफ फिक्शन नाकिद प्रोफेसर नज़ीर अहमद मलिक को पेश किया गया। शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की जानिब से ये सालाना एवार्ड दिया गया। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा और डॉक्टर परवेज शहरियार इस ऐवान सदारत में मेहमान एजाजी के तौर पर मौजूद थे। तकरीब की इब्तदा नाजिम प्रोफेसर इरफान आरिफ ने डॉक्टर मंजर काजमी के तारुफ से की। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने एवार्ड याफ्तगान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये अमल उर्दू फिक्शन निगारों में मजीद जोश और जज्बा अता करेगा। मेहमान खसूसी प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने एवार्ड कमेटी के अगराज व मकासद को नाजरीन के सामने बयान किया। तकरीब की निजामत प्रोफेसर इरफान आरिफ ने अंजाम दी, जबकि इजहार तशक्कुर जहूर अहमद तरंबू ने बड़े खूबसूरती और दिलकश अंदाज में पेश करके तकरीब का इख्तिताम किया। और आइए अब मुन्नी बेगम की आवाज में समाअत करते हैं ये खूबसूरत गजल।

0: सामीन, अभी आप मुन्नी बेगम की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। आइए सामीन, अब जिक्र करते हैं रस्म इजरा और मज़ाकरे का। सामीन, गुज़िश्ता दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में मारूफ नाक़िद डॉक्टर खालिद मुबशिर की दो तनकीदी किताबें तनकीदी तफाउल और तामुल और अपनी सी ताबीरें की रस्म इजरा और मज़ाकरे का इनेकाद अमल में आया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर शहपर रसूल ने की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर खालिद मुबशिर का अदबी ताल्लुक नसर और तनकीद के साथ शायरी से भी मजबूत है। प्रोफेसर खालिद महमूद ने कहा कि हमें उनकी इल्मी और अदबी सलाहियतों पर फख्र है। प्रोफेसर तस्नीम फातिमा ने कहा कि खालिद मुबशिर कम लिखते हैं लेकिन उनकी तहरीरों की बुनियादें मजबूत होती हैं। डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा ने दोनों किताबों को गैर मामूली फिक्री सलाहियतों का मजहर करार दिया। सैफी सरोंजी ने कहा कि खालिद मुबशिर की नसर में कारी को अपनी जानिब मुतवज्जा रखने की खास सलाहियत है और वो अपने ख्यालात मजबूत इस्तदलाल के साथ पेश करते हैं। इस तकरीब में कसीर तादाद में अदब और दानिशवरान शरीक हुए।
1: आइए अब बात करते हैं उर्दू कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले शेरी नशिस्त की। समीन, गुज़श्ता दिनों उर्दू कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लक्ष्मी नगर में एक पुरवकार शेरी नशिस्त का इनेकाद अमल में आया। नशिस्त की सदारत सुहैल सिद्दीकी अलीग ने की, जबकि निज़ामत शायर व सहाफ़ी अमीर अमरोही ने की। महफिल में अतहर अजीज़ ने मेहमान खसूसी और मुनीर हमदम ने मेहमान ज़ीवक़ार की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सदर महफिल सुहैल सिद्दीकी अलीग ने कहा कि उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज के लिए ऐसी शेरी नशिस्तों का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शुआरा और अदीबों की हौसला अफजाई से नई नस्ल में उर्दू से वाबस्तगी मजीद मजबूत होगी। जनाब अतहर अजीज ने कहा कि शेरी महाफिल उर्दू की तहजीबी रिवायत का अहम हिस्सा है। उन्होंने तमाम शुआरा और सामीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसी महफिलें अदबी ज़ौक़ को फ़रोग देने के साथ साथ बाहमी मोहब्बत व अख़ुव्वत को भी परवान चढ़ाती हैं। इस मौके पर दिल्ली के मारूफ शुआरा ने अपना मुंतखब कलाम पेश किया और अपने मुरस्सा अशार से सामीन को महसूस किया। शुआरा के कलाम पर हाजरीन ने खूब दाद और तहसीन पेश की, जिससे महफिल का अदबी माहौल मजीद खुशगवार हो गया। और आइए अब तलत अजीज़ की आवाज़ में सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल।

0: सामीन, अभी आप तलत अजीज की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। आइए सामीन, अब बात करते हैं बशीर बद्र की याद में मुनाकिद होने वाले मुशायरे की। सामीन, गुज़िश्ता दिनों नई दिल्ली में अदबी सकाफती तंजीम कल्चरल विस्टा आप और हम के ज़ेर एहतमाम ऐवान गालिब में शायर बशीर बद्र की याद में खराज अकीदत के उनवान से मुशायरा मुनाकिद किया गया। इस मौके पर शायर मुनीर हमदम को अदबी खिदमात के एतराफ में कल्चरल विस्टा बशीर बद्र अवार्ड 2026 पेश किया गया। मारूफ शायर व सहाफ़ी जनाब मोइन शादाब ने बशीर बद्र की शख्सियत और शायरी पर इजहार ख्याल करते हुए उनसे वाबस्ता अपनी मुलाकातों और तजर्बात का बयान किया। आखिर में कल्चरल विस्टा आप और हम की बानी जरीन सिद्दीकी ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया।
1: आइए सामीन, अब बात करते हैं मुशायरों की। समीन, गुज़िश्ता दिनों उर्दू लिटरेचर डॉट ऑर्ग के ज़ेर एहतमाम मारूफ तंज़ो मिज़ाह के शायर अबुल फैज़ हाशमी नटखट अज़ीमाबादी के एजाज़ में एक खुसूसी शेरी नशिस्त दिल्ली के ओखला में मुनाकिद हुई। नशिस्त की सदारत डॉक्टर वाहिद नज़ीर ने की, जबकि खालिद मुबशिर और रऊफ रामिश मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। समीन, गुज़िश्ता दिनों नई दिल्ली के नागलोई में एक रस्म इजरा व नातिया प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शायर फखरुद्दीन अशरफ के नातिया मजमूए कलाम गुलजार अशरफ का इजरा अमल में आया। बतौर मेहमान खुसूसी JNU के प्रोफेसर डॉक्टर शफी अयूब और शायर व सहाफ़ी डॉक्टर हबीब सैफी ने शिरकत की और गुलजार अशरफ के अदबी व फिक्री उसलूब पर नहायत मालूमाती पुरमग़्ज़ गुफ्तगू की और साहबे किताब को इस खूबसूरत नातिया मजमूए की इशात पर दिली मुबारकबाद पेश की। रस्म इजरा के बाद एक नातिया महफिल का आगाज हुआ। इसके चंद मुंतखब कलाम आप सब सामीन की नजर हैं। ढांपे रहती है सदा शाह उमम की रहमत, ढांपे रहती है सदा शाह उमम की रहमत, कितना रखती है वो तकदीर के मारों का ख्याल। सामीन, यह शेर था जनाब कासिम शमसी का। और अब समाप्त कीजिए जनाब फरीद अहमद फरीद का यह शेर, रह के कायम तुम अपने ईमान पर, रह के कायम तुम अपने ईमान पर, खुद को दुनिया में मोतबर रखना। और अब समाप्त कीजिए ताबिश खैराबादी का ये कलाम, तख्त शाही न दौलत नजर चाहिए, तख्त शाही न दौलत नजर चाहिए, भीख में शाह बतहा का दर चाहिए। खुदा का नाम लेते हैं नबी का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं नबी का नाम लेते हैं, यही वो नाम है हम जिसको सुबह शाम लेते हैं। समीन, यह शेर था जनाब फखरुद्दीन अशरफ का। तो समीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम उर्दू दुनिया के शब रोज। तरतीब पेशकश थी इंतजार सैफी की।
0: समीन, इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम
1: और सरफराज आलम को इजाज़त दें।
0: खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिश। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये राशि ऐसे छोटे और मझौले उद्यमों को लंबे समय के लिए इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगी, जिनका कारोबार मजबूत है और जिनमें आगे विस्तार की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: शिपबिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वो भारत की मैरिटाइम फ्यूचर

0: ये एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरंतकम में मतदान का प्रतिशत 70.31% और धारापुरम में 68.08% है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां जनता ने बार बार किसी एक नेता को अपना समर्थन दिया हो। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री के आधार पर 31.8% बढ़कर 25 लाख इकाई से अधिक हो गई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority. Briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the authority will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.

का नाम है इशिका और इनकी आयु 22 वर्ष है। कद 160 सेंटीमीटर है। गोल चेहरा है और अंतिम बार इन्होंने गुलाबी सूट सलवार

अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है ईशिका और इनकी आयु 22 वर्ष है। कद 160 सेंटीमीटर है। गोल चेहरा है और अंतिम बार इन्होंने गुलाबी सूट सलवार पहन रखी थी। किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क कर सकते।

अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना जाहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है श्रीमती प्रीति। इनकी आयु 32 वर्ष है। कद 5 फीट 6 इंच है। किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो वे थाना जाहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क कर

0: नगर कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से।
1: खोई हुई व्यक्ति का नाम है फिरोज। इनकी आयु 21 वर्ष है। कद 5 फीट 8 इंच है। रंग गेहुआ है। मानसिक रूप से ये थोड़े कमज़ोर हैं। अगर घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। अगर किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से। खोई हुई व्यक्ति का नाम है अंजलि, जो कि रंजीत रविदास की पुत्री हैं। इनकी आयु 22 वर्ष है। कद 5 फुट 7 इंच है। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है रितिका। इनकी आयु 19 वर्ष है। कद 5 फुट है।

0: तेरे सामने आसमां और भी है। क्या खूब लिखा है इकबाल साहब ने, जो अनंत संभावनाओं और जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
1: नमस्कार साथियों, वक्त हो चला है आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपके पसंदीदा यूथ प्रोग्राम युववाणी का।
0: आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त श्रीनाथ,
1: और मैं हूं नीतू। सभी लिसनर्स का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम सेगमेंट्स पर। सबसे पहले हम करेंगे आज की बात, जहां आज हम पेड़ पौधों से लेकर आसमान

0: नमस्कार साथियों, वक्त हो चला है आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपके पसंदीदा यूथ प्रोग्राम युववाणी का।
1: आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त श्रीनाथ
0: और मैं हूं नीतू। सभी लिसनर्स का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम सेगमेंट्स पर। सबसे पहले हम करेंगे आज की बात, जहां आज हम पेड़ पौधों से लेकर आसमान

0: में पास्ट देखते हैं तो हैरान और स्पेल बाउंड से हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में पास्ट देखते हैं तो हम इतने एंग्शियस और स्ट्रेस्ड क्यों हो जाते हैं?
1: आज की यूथ सबसे ज्यादा इसी बात से स्ट्रगल कर रही है, लुकिंग बैक एट पास्ट मिस्टेक्स, फेल्ड प्लान्स, बैड डिसीजंस या करियर डाउट्स।
0: हम सब मेंटल टाइम ट्रेवल करते रहते हैं, वी लूप ओवर थिंग्स। काश मैंने वो पाथ चूज ना किया होता, काश मैं उस एग्जाम में परफॉर्म कर लेता, काश मैंने वो मौका ना गवाया होता।
1: लेकिन साइंस और नेचर हमें एक बहुत प्यारी बात सिखाते हैं, जो स्टार आज हमें चमकता हुआ दिख रहा है, हो सकता है वो स्टार एक्चुअली एक्सप्लोड हो चुका हो, शायद वो अब एग्जिस्ट भी ना करता हो, पर उसकी रोशनी आसमान को तब भी रोशन करती है।
0: वाओ, क्या एनालॉजी है। मीनिंग आपका पास्ट शायद खत्म हो चुका है, बट उसकी रोशनी।
1: यानी उससे मिली लर्निंग आज भी आपकी लाइफ को इल्यूमिनेट कर सकती है।
0: और इस वाइल्ड लाइफ वीक पर अगर हम जंगल्स को देखें, अ ट्री लूजेस इट्स लीव्स एवरी ऑटम, बर्ड्स ड्रॉप देयर ओल्ड फेदर्स टू ग्रो न्यू वंस, पर इस बदलाव से वो रुक नहीं जाते, वो अडेप्ट करते हैं और वापस कोशिश करते हैं। इसका मतलब हमें अपने बीते कल का बोझ उठाकर चलने की कोई जरूरत नहीं है।
1: नेचर हमें सिखाता है कि हर ऑर्गेजम का अपना इकोसिस्टम और अपना पेस होता है। जहां एक बनियन ट्री को ग्रो होने में डेकेड्स लगते हैं, वहीं एक बैम्बू प्लांट मंथ्स में बड़ा हो जाता है। दोनों की वैल्यू अपनी जगह यूनिक है।
0: दैट वॉज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग नीतू, मुझे तो काफी क्लैरिटी मिली है इससे। क्या हमारे लिसनर्स को क्लैरिटी मिली है? जानेंगे इस रिलेटेबल सॉन्ग के बाद।

0: वेलकम बैक लिसनर्स हमारे इंस्पायरिंग सेगमेंट यानी कि मन से माइक्रोफोन में, क्योंकि आज हमारा थीम आर्ट एंड लिटरेचर भी है, तो बात करेंगे एक हस्ती की कला की दुनिया से।
1: अच्छा श्रीनाथ, अगर मैं तुम्हें कुछ क्लूज दूं तो क्या उन्हें डिकोड कर पाओगे?
0: तो क्या अब इम्तिहान की बारी मेरी है?
1: ऐसे ही समझ लो।
0: तो चलो मैं भी रेडी हूँ।
1: एक मिट्टी का कच्चा घर, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ₹3 की मजदूरी वाला टोकन और फावड़ा, राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान।
0: जितना मैं समझ पाया हूँ, ऐसा लगता है ये तीनों क्लूज किसी एक ही इंसान की लाइफ के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं।
1: बिल्कुल सही, ये उस लेजेंड की कहानी है जिसने मिट्टी की दीवारों पर गेरू से लिखना शुरू किया और आज उनका हुनर दुनिया भर की गैलरीज में चमक रहा है।
0: ये बेशक हवा में तीर चलाने जैसा होगा, पर क्या आज हम बात कर रहे हैं भील फितौरा आर्ट क्वीन भूरीबाई की?
1: तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, मन से माइक्रोफोन तक। पर आज भूरी भाई की वो अनटोल्ड इंस्पायरिंग जर्नी जो साबित करती है कि अगर हुनर में दम हो तो गरीबी की दीवारें भी रास्ता दे देती हैं।
0: नीतू, क्या तुम्हें पता है, जब भी मैं भूरी बाई के बारे में सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है, सादगी से सफलता। आज हम महंगे कैनवस और एक्रेलिक कलर्स ढूंढते हैं, पर भूरी बाई ने अपनी आर्ट कैसे शुरू की थी, वो तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है।
1: सच बताऊं, जब मैंने ये पढ़ा आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे। मध्य प्रदेश के झबुआ के छोटे से गांव पितौल की रहने वाली भूरी बाई के पास ना कागज था, ना ब्रश, ना रंग।
0: वे नीम की टहनी या बांस की सीख को आगे से चबाकर ब्रश बनाती थी, और उनकी रंग बनाने की फैक्ट्री थी।
1: रसोई और कुदरत, हल्दी से पीला, दिए की कालक से काला, गेरू मिट्टी से लाल और पत्तियों के रस से हरा रंग।
0: वो कहते हैं ना कि कुदरत माँ की तरह होती है, वो अपनी सभी संतानों को बिना किसी भेदभाव के सब कुछ उपलब्ध कराती है।
1: और सबसे बड़ी बात, भील कम्युनिटी में पिथोरा आर्ट सिर्फ पुरुष बनाते थे, वो भी पूजा पाठ में घर की दीवारों पर।
0: एंड शी ब्रोक दैट एज ओल्ड जेंडर बैरियर टू। भूरी बाई अपनी कम्युनिटी की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने इस कला को दीवार से निकालकर कैनवस और पेपर पर उतार दिया।
1: और लिसनर्स ये सुनकर सरप्राइज होंगे कि एक ड्रॉट भूरी बाई की लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना।
0: लिसनर से पहले तो मैं ही शॉक्ड हो गया हूँ कि एक ड्रॉट किसी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है।
1: तो सुनो, गांव में जब सूखा पड़ा तो भूरी बाई और उनके पति काम की तलाश में भोपाल आए। वहां भारत भवन की बिल्डिंग बन रही थी और वो रोज की सिर्फ ₹3 मजदूरी पर गारा और ईंटें ढोने का काम कर रही थी।
0: एंड देन केम द रियल ट्विस्ट। फिर प्रसिद्ध आर्टिस्ट जे स्वामीनाथन की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने भूरी भाई के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान लिया।
1: स्वामीनाथन जी ने उन्हें एक ब्राउन पेपर और कलर समाये और कहा, जो तुम दीवारों पर बनाती हो वो इस कागज पर बनाकर दिखाओ।
0: बस फिर क्या था, भूरी बाई पहले तो हिचकिचाई। उन्होंने सोचा कि भाई कागज खराब हुआ तो ठेकेदार मजदूरी काट लेगा, पर जैसे ही उन्होंने पहली बार कागज पर अपना ब्रश चलाया, इट वॉज प्योर मैजिक।
1: सोचिए दोस्तों, दिन में ₹3 की मजदूरी करने वाली महिला शाम को भारत भवन के स्टूडियो में बैठकर भारत की सबसे अनूठी पेंटिंग्स बना रही थी।
0: भूरी बाई की सबसे बड़ी खासियत ही यही रही, ट्रेडिशन और कल्चर ने कभी उन्हें सीमित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी धरोहर को अपने साथ ही एवॉल्व कर लिया।
1: बिल्कुल, जब वो पहली बार भोपाल की बस में बैठी या उन्होंने हवा में प्लेन देखा तो उन्होंने अपनी पिथोरा स्टाइल में जानवरों और देवी देवताओं के साथ साथ बस, ट्रेन, हॉस्पिटल और एरोप्लेन भी पेंट करना शुरू कर दिया।
0: ट्रेडिशनल आर्ट और मॉडर्न दुनिया के सुर ऐसे मिला दिए कि एक फ्लॉलेस मेलोडी बन गई।
1: और उनकी इसी दशकों की साधना का नतीजा था कि साल 2021 में उन्हें भारत सरकार ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा।
0: उन्होंने साबित किया कि आपके टैलेंट की कोई भाषा, जाति या सीमा नहीं होती, जरूरत है तो बस उसे पहचानने की।
1: आज जब भी हम अपनी लाइफ में किसी छोटे से स्ट्रगल से घबराते हैं तो भूरी बाई की कहानी याद रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल नीतू, हुनर किसी भी पहचान या अमीरी का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ आपकी सच्ची लगन मांगता है। भूरी बाई आज भोपाल में जन

0: भारतीय लोक कला राज्य परिषद में काम करती हैं और अपनी अगली पीढ़ी को ये वही सिखा रही हैं जो इन्हें बखूबी आता है, यानी कि कला से अपनी पहचान बनाना।
1: क्या खूब कहा शहना तुमने। तो दोस्तों, मन से माइक्रोफोन तक का आज का टेक अवे यही है, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपनी काबिलियत को पहचाने और अपनी धरोहर को कभी कम ना आके, क्योंकि आपकी जड़ें ही आपको आसमान तक पहुंचने की ताकत देती हैं। इस सीख के साथ लेते हैं एक मोटिवेशनल म्यूजिक ब्रेक।

0: अब बढ़ते हैं हमारे वीकली सेगमेंट की ओर। आज मंगलवार है तो बातें होंगी कुछ कला और साहित्य से जुड़ी।
1: नीतू, तुम जानती हो मुझे कला और साहित्य की सबसे खास बात क्या लगती है? पहली नजर में कुछ भी बताना मुश्किल है। अक्सर हम सब पहली नजर में देखते हैं, सुपरफिशियल इंप्रेशन बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर असली कला का एक ऐसा रहस्य है जो अपने ऊपर से पर्दा उठने का इंतजार हमेशा करता रहता है।
0: एब्सोल्युटली, स्टैंडर्ड रीडिंग तो सभी करते हैं, बट आर्ट इज अ मल्टी लेयर्ड कॉन्वर्सेशन। अगर आप ठहर कर बारीकियों से रूबरू नहीं हो रहे हैं, तब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।
1: और इसका सबसे क्लासिक इंडियन एग्जाम्पल है श्री रविंद्रनाथ टैगोर साहब की विजुअल आर्ट।
0: गुरुदेव टैगोर को दुनिया उन्हें कई प्रतिभाओं के लिए जानती है, एज अ पोएट, एज अ फिलोसोफर, प्ले राइट एंड आर नेशनल नोबल लॉरेट, पर उनका विजुअल आर्ट करियर एंड स्टेज एक्सीडेंटल जीनियस था।
1: और श्रोताओं को जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी कला भी उनकी कविताओं से ही निकली। उन्होंने अपने लेट 60s में पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, पर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने किसी ब्लैंक कैनवस या स्टूडियो से शुरू नहीं किया। ही एक्चुअली स्टार्टेड ऑन हिज पोएटिक मैन्युस्क्रिप्ट्स।
0: जब हमसे लिखते वक्त कोई वर्ड गलत हो जाता है तो क्या करते हैं? क्रॉस आउट करके छोड़ देते हैं या पीछे निकाल देते हैं। पर टैगोर साहब को वो गलतियां थोड़ी गलती तो थी, पर उन्होंने उनसे मुंह नहीं फेरा। गलती छिपाने की जगह

0: हाँ, उन्होंने इन डॉट्स को जोड़कर कुछ नया बनाना शुरू कर दिया।
1: और वे मिटी हुई गलतियां धीरे धीरे खूबसूरत पक्षियों, रहस्यमय चेहरों और नाटकीय छाया आकृतियों में बदल गईं, यानी कि एक सामान्य त्रुटि से अप्रतिम कला का जन्म।
0: थिंक अबाउट द साइकोलॉजिकल इनसाइट देयर। उन्होंने मिस्टेक्स को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया।
1: वॉट वी नॉर्मली राइट ऑफ एज अ फ्लॉ और अ मिस्टेक इन लाइफ इज ऑफन जस्ट अनशेप्ड क्रिएटिव पोटेंशियल वेटिंग फॉर अ सेकेंड लुक।
0: ब्रिलियंट पॉइंट। और ऐसी ही एक हिडन लेयर छिपी है राजा रवि वर्मा की आइकॉनिक पेंटिंग में, शकुंतला लुकिंग बैक फॉर दुष्यंता।
1: आई लव दैट पीस। सरफेस लेवल पर लगता है कि शकुंतला पाव से कांटा निकालने के लिए रुक गई हैं। इट्स पेंटेड विथ सच ग्रेस एंड ब्यूटी, पर अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके कंपेनियंस के विजुअल क्यूज गौर से देखें तो पता चलता है कि शी इजेंट एक्चुअली बॉदर्ड बाय द थॉर्न एट ऑल।
0: एग्जैक्टली। पाँव में कांटा तो सिर्फ एक बहाना है, जेंसी टर्म में बोले तो असल में वो दुष्यंत की एक झलक पाने के लिए बस थोड़ा टाइम बाय कर रही होती है।
1: एक सिंगल फ्रेम में उन्होंने ह्यूमन हेजिटेशन, कोवर्ट रोमांस और सोशल हेजिटेशन तीनों का सामंजस्य बिठा दिया।
0: इट टीचेस अस अ मेजर लेसन इन इमोशनल इंटेलिजेंस। लोग जो कह रहे हैं या अपर लेवल पर दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं वह पूरा सच हो। कॉन्टेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस ऑफन स्पीक फार लाउडर देन वर्ड्स।
1: और पता है नीतू, यही विजुअल स्टोरी टेलिंग पेंटिंग से निकलकर हमारे सिनेमा में भी आई, एक सत्यजीत रेज मास्टरपीस चारुलता।
0: हु कैन फॉरगेट द फेमस ओपरा ग्लास सीन। रे साहब वॉज अ मास्टर ऑफ शोइंग, नॉट जस्ट टेलिंग।
1: प्रिसाइजली, चारुलता इज ट्रैप्ड इन अ लोनली अपर क्लास मैंशन। उनको उनके अकेलेपन के बारे में सिर्फ सांत्वना देने की बजाय रे साहब सिंपली गिव्स हर अ पेयर ऑफ ओपरा ग्लासेस।
0: Through those lenses, she watches the outside world, street performers, passers-by, everyday life, sabhi ek band khidki ke piche se. The opera glasses become metaphor for her emotional distance and curiosity.
1: और यही डीप लेयर हमारे इंडियन लिटरेचर में भी दिख जाती है।
0: साहित्य की बात हो, मुंशी प्रेमचंद जी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: एग्जैक्टली। अब मुंशी प्रेमचंद जी की शॉर्ट स्टोरी पूस की रात को ही ले लीजिए।
0: शायद पहली बार में लगे कि कहानी सिर्फ गरीबी की या महज एक किरदार की कहानी है, पर कोर टॉपिक फ्रीजिंग विंटर नहीं है बल्कि ह्यूमन कंडीशनिंग है।
1: राइट। जब हल्कू की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, ही फील्स एन अनएक्सपेक्टेड डीप सेंस ऑफ रिलीफ, क्योंकि अब उसे कड़कती ठंड में फसल का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रेमचंद ने एक गरीब किसान के जीवन के संघर्ष और उसकी व्यवस्था का हृदय स्पर्शी दृश्य हमारे सामने रखा, जहां अभाव भी आजादी बन जाता है।
0: इट्स अ मास्टर क्लास इन एम्पैथी। लिटरेचर सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज का दर्पण भी होता है।
1: तो आज हमारे सभी लिसनर्स के लिए की लर्निंग यही है, चाहे कोई पेंटिंग हो, कोई क्लासिक बुक हो या फिर कोई रियल लाइफ सिचुएशन, पहली नजर पर तो विश्वास कभी मत कीजिए।
0: जरा ठहरिए, समझिए और जानिए कि शब्दों के पार क्या लिखा है। क्या पता उस आर्ट या लिटरेचर पीस के गर्भ में क्या क्या छिपा है।
1: और अब इसी सीख के साथ लेते हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक।